वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 MHz पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

तोहां सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तोहां सारे इस कार्यक्रम सुन दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तोहां सारे इये ही बनी रिया कनिष्ठ सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

0: 92.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट श्रोताओ तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। तो सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।
1: शाम एक पन

ए तो हाँ सारे ना अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुनने दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर? अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो,
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: समझियों के यहाँ पे 4 कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए 1 कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं।
2: माँ सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मेरा
10: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देकर रिजाइन कर?
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार? सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े। अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास समाचारों की हेडलाइंस। अमरीकी सेना का ईरानी रडार और मिसाइल ठिकानों पर बड़ा हमला। दिल्ली उत्तराखंड में खालिस्तानी हमले की आशंका, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले फील्ड कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। ग्रीन एनर्जी व नैनो टेक्नोलॉजी में शुरू होंगे 4 नए कोर्स। अब डिपो में राशन कार्ड नंबर डालकर भी मिल जाएगा राशन। अब समाचार विस्तार से। तकनीकी शिक्षा, आवास एवं नगर नियोजन तथा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश निर्माणी ने कहा कि सतत संतुलित एवं सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए प्रभावी नियोजन और विभिन्न राज्यों के सफल अनुभवों से सीखना समय की आवश्यकता है। उनका कहना है कि बेहतर नियोजन पद्धतियों के आदान प्रदान से प्रदेशों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक विकास मॉडल तैयार करने में सहायता मिलती है। धर्मशाला स्थित रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट में टाउन प्लानर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नॉर्दर्न चैप्टर द्वारा आयोजित नीतिगत ढांचा और योजना प्रथाओं विषय एक दिवसीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सेमिनार का प्रमुख उद्देश्य हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में अपनाई जा रही श्रेष्ठ नियोजन कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान कर एक दूसरे के अनुभवों से सीखना था। होर्मुज जल डमरू मध्य में शनिवार को एक टैंकर पर हमला हुआ। ये घटना उस समय हुई जब बहरीन ने कहा कि ईरान ने उसे निशाना बनाकर हमला किया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि विवादों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन अगर हिंसा जारी रहती है तो जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा। आने वाले दिनों में दिल्ली एवं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर खालिस्तानी आतंकी हमले का कथित खतरा है। इस खतरे को देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सुरक्षा अलर्ट में दिल्ली एवं उत्तराखंड में मंदिरों को निशाना बनाए जाने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस इमारतों पर भी खतरा होने की आशंका जताई गई है। अलर्ट के बाद उत्तराखंड पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बनाने वाले फील्ड एवं तकनीकी कर्मचारियों पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिजली के खंभों पर कार्य करते समय रील बनाना और उसे सोशल मीडिया पर साझा करना गंभीर मामला है और ऐसा करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने ग्रीन एनर्जी एवं नैनो टेक्नोलॉजी में पीएचडी और एमटेक सहित 4 नए कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है जो इसी सत्र से शुरू होंगे। इसी ने पीएचडी शोध को राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान संस्थानों से जोड़ने का निर्णय लिया। शनिवार को परिसर में हुई ईसी की बैठक में इस तरह के कई फैसले लिए गए। प्रदेश के सस्ते राशन के डिपुओं में अब राशन कार्ड का नंबर डालकर भी राशन मिल जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने शनिवार को पोस्ट मशीनों में राशन कार्ड मोड का विकल्प डाल दिया है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता को समय पर राशन मिल सके। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग का आभार जताया है। देवभूमि की 3 होनहार बेटियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर अमेरिका में प्रदेश का रंका बजाया है। टांडा मेडिकल कॉलेज की होनहार पूर्व छात्रा डॉक्टर श्रेया कटोच, डॉक्टर सुरभि डडवाल और आईजीएमसी शिमला की पूर्व छात्रा डॉक्टर अनुभूति वाश्यानी। देश में बढ़ते गुमशुदगी और मानव तस्करी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोर्ट के आदेशों के अनुसार हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाना अनिवार्य है। मानव तस्करी रोकने को 4 सप्ताह की समय सीमा तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए

4 सप्ताह के भीतर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को पूरी तरह सक्रिय किया जाए। साथ ही सभी पुलिस थानों को एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए कहा गया है, जहां गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और मानव तस्करी से जुड़े मामलों का रियल टाइम डाटा उपलब्ध रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इतिहास रच दिया है। इसरो ने शनिवार को चंद्रमा तक पहुंचने का एक और टेस्ट पास कर लिया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट पूरा किया गया। इस टेस्ट को 175 टन के बेहद ऊंचे भ्रष्ट लेवल पर अंजाम दिया गया है। ये इस सीरीज का 8वां सफल टेस्ट था। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य इंजन की प्री बर्नर इग्निशन के बाद की क्षमता का जांचना था। इसरो ने इस बार 88% की क्षमता पर इंजन को चलाकर अपनी स्वदेशी तकनीक का लोहा मनवाया है। प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 6(b) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्कूल में तंबाकू निषेध के चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं तथा स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाया जाएगा। जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक स्कूल के मुख्य प्रवेश एवं निकास द्वार सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर निर्धारित प्रारूप से तंबाकू निषेध संबंधी चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य रहेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़ा बंगाल दौरे से क्षेत्र के लोगों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2011 के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बड़ा बंगाल का दौरा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहला अवसर है जब किसी मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में रात्रि प्रवास किया है। ग्रामीणों ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और दिए गए निर्देशों से बड़ा बंगाल के विकास को नई गति मिलेगी। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पूरी तरह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं में रंगे नजर आए। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा चोला डोरा धारण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया तथा स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक लोक नृत्य में भी सहभागिता की। करीब 15 साल के एक लंबे अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश के मुखिया को अपने बीच पाकर सिर्फ कांगड़ा जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे दुर्गम और कठिन क्षेत्र बड़ा बंगाल के लोग खुशी से चहक उठे। खासकर उन युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं था जिन्होंने बचपन की दहलीज को अभी अभी लांघा है और पहली बार किसी मुख्यमंत्री को देखने का सपना पूरा हुआ। लगभग 1.5 दशक के बाद कोई मुख्यमंत्री न सिर्फ बड़ा बंगाल क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे बल्कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरी रात स्थानीय लोगों के साथ बिताकर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया। ये पहली बार नहीं जब श्री सुक्खू ने दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर लोगों का दुख दर्द साझा किया। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की नई सोच के साथ वो लगातार ऐसे कठिन क्षेत्रों में रात्रि ठहराव करते आए हैं जहां आमतौर पर कोई नेता पहुंचने में रुचि नहीं दिखाते हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो। बढ़िया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
2: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
2: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
3: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
2: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर? अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
2: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
3: वो किसी को भी हो सकता है।
2: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो,
2: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: भारत माँ की पुकार, नशा छोड़ो, देश को आगे बढ़ाओ।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सिंधियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके.
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
10: सर, मेरा
11: कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा।

0: मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
1: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
2: मोहित, मेरा इस्तीफा।
3: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार? सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग।
1: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला।

श्रोताओं, कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ ख़ास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार। और इसी के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सोमवार की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आज हम आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही साथ सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम में प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचाते हैं और आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला। और साथ ही साथ श्रोताओं, दो घंटे का सफ़र हमारा आपके साथ रहेगा। इस दो घंटे के सफ़र में करेंगे हम आपके साथ ढेर सारी बातें और सुनवाएंगे आपको गीत। तो बिल्कुल देरी न करते हुए कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुँचाते हैं।

जी हाँ श्रोताओ, ये प्यारी सी सुबह आज ढेर सारी जानकारियाँ लिए आई है। और जानकारियों में सबसे पहले हम वेदर की बात करते हैं, यानी मौसम की बात करते हैं। जब हम सुबह आपसे मिलने आ रहे थे तो काफ़ी खूबसूरत और अच्छा सुहाना सा मौसम था, क्योंकि पिछले कल गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान थे। क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो कम से कम थोड़ा सा राहत हमें मिलती है जब मौसम अच्छा हो जाता है, और आज जो था थोड़ा सा ठंडक भरा मौसम लग रहा था। यानी अभी तक धूप खैर चढ़ी नहीं थी, खिली नहीं थी, उसकी वजह से हमें तो भी अच्छा लगा। खैर, इस समय के मौसम की बात करें तो हम तो स्टूडियो में अंदर बैठ चुके हैं और आपको पता होगा कि बाहर का मौसम कैसा है, लेकिन सुबह सुबह जब थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है तो बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है कि गर्मी से हमें राहत मिली है। तो श्रोताओ, बातें हमारी शुरू हो चुकी है, और बातें शुरू होती है तो ध्यान नहीं रहता है हमने कौन से बात करनी थी। खैर, जैसे ही मेरा ध्यान फिर से मौसम की ओर पड़ा तो मुझे याद आया कि मैं तो अपनी बातों से अपने विषय से भटक रही थी। खैर कोई बात नहीं श्रोताओ, मौका मिलता है कभी कभार आपसे बातें करने का तो मन करता है दिल की बातें जितनी दिल में है कह ही डाली जाएँ आपसे। तो फिर से हम अपने मौसम की ओर रुक करते हैं। मौसम की बातचीत हो रही थी तो आज क्या वेदर है, 29 डिग्री सेल्सियस, और मौसम में ह्यूमिडिटी बनी हुई है 63%। लगभग इस तरह से लग रहा है कि मॉनसून ने दस्तक दे दिए हैं, और हर दिन ऐसा ही हो रहा है। थोड़ी सी बारिश हो रही है, थोड़ा सा धूप खिल रही है। तो श्रोताओं, बरसातें हमारे यहाँ की धर्मशाला की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो खैर, मौसम में बदलाव भी बेहद ज़रूरी है, होना ही चाहिए। जब तक मौसम में बदलाव नहीं होगा तो मुश्किल थोड़ी सी हो जाती है, और बारिशें भी हमारी फसलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए अच्छी रहती हैं। और मौसम में बदलाव इसी तरह से होना चाहिए, लेकिन लेकिन थोड़ा सा बातों के साथ फिर से हम कार्यक्रम में रुक लेते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापस आते हैं, क्योंकि अभी जानकारियाँ हमने आपके साथ साझा करना शुरू की हैं। तो श्रोताओ, आज के दिन की बात करें, यानी 29 जून का दिन जो है हमारे लिए खास जानकारियाँ लेकर आया है। आज भारत के महान वैज्ञानिक और सांख्यिकी विद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती है। उनके सम्मान में आज का दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो श्रोताओ, आज के दिन में बहुत सारी घटनाएं जो हैं हमारे इतिहास में घटी हैं। 1927 की बात की जाए तो दो अमेरिकन विमान चालक ने प्रशांत महासागर के पार अपनी पहली सफल उड़ान पूरी की थी, और 1976 में यूनाइटेड किंगडम ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 2007 में भारत सरकार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीसी महालनोबिस के योगदान के सम्मान देते हुए 29 जून यानी आज के दिन हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो श्रोताओ, और भी जानकारियाँ हम कार्यक्रम में आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में थोड़ा सा रुकते हैं और आप सभी तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

0: चलो इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 9:20 और आइए सुनते हैं समाचार।
1: करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित। सेब की अर्ली वैरायटी टाइडमैन पहुंची फल मंडी, बागवानों को मिल रहे अच्छे दाम। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई किया और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में झमाझम बरस रहे मेघ, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मेनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने यह सम्मान जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे सभी देशों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के बैंड ने भी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक राजधानी विक्टोरिया में तैनात रहे, जिसने भारत और सेशल्स की मजबूत मित्रता को दर्शाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। शिमला की भट्टाकुफर फल मंडी में सेब सीजन ने दस्तक दे दी है। मंडी में कम ऊंचाई वाले इलाकों से आई अर्ली वैरायटी टाइडमैन सेब प्रति 20 किलो बॉक्स 2,100 रुपए तक बिका है। शिमला जिले के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों मशोबरा, ठियोग और कोटखाई से रोजाना सेब के 8 से 10 बॉक्स मंडी पहुंच रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
2: आढ़तियों के मुताबिक सीजन की शुरुआत अच्छी है और बागवानों को 100 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दाम मिल रहे हैं। इस बार मौसम की मार से उत्पादन कम रहने की उम्मीद है, जिससे दाम अच्छे मिलने की संभावना है। मंडी में अभी नाशपति, पलम, चेरी समेत स्टोन फ्रूट की आवक भी जोरों पर है। आढ़तियों ने बागवानों से अपील की है कि कच्चा सेब मंडी में ना लाएं, इससे दाम गिरने की संभावना रहती है। वहीं सेब सीजन को सुचारू बनाने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। उपायुक्त शिमला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बागवानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और परिवहन और विपणन व्यवस्था प्रभावी रहे। फागु में 15 जुलाई तक मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला जिले में इस वर्ष करीब 2,30,990 मीट्रिक टन सेब के उत्पादन का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष यह 4,40,684 मीट्रिक टन उत्पादन था। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। धर्मशाला में ये कार्यक्रम मिनी सचिवालय कचहरी अड्डा स्थित कैबिनेट हॉल में तथा पालमपुर में नगर निगम कार्यालय में संपन्न होगा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि पदेन पार्षद होने के नाते धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा को शपथ ग्रहण समारोह व निर्वाचन प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष बुटेल, जो नगर निगम के पदेन पार्षद हैं, को भी शपथ ग्रहण समारोह व निर्वाचन प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण के उपरांत महापौर व उप महापौर पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया भी सम्पन्न होगी। देश भर में आज संत गुरु कबीरदास जी की जयंती मनाई जा रही है। कबीरदास न सिर्फ एक कवि और लेखक थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को संत कबीरदास जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोलन का राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेला कल संपन्न हो गया। सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी बड़ी बहन मां दुर्गा से मिलने के बाद मूल स्थान पर लौट गईं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समापन समारोह में शिरकत की। गंज बाजार से लेकर माता के मंदिर तक लोगों ने जगह जगह पर फूलों की बारिश की और पूरा शहर माँ के जयकारों से गूंज उठा। स्पीति घाटी की 17 वर्षीय तंजिन नॉर्डन ने 5,970 मीटर ऊंची कनिमो पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर नया इतिहास रचा है। रिपोर्ट के अनुसार वह इस चक्र पर तिरंगा फहराने वाली स्पीति घाटी की पहली महिला बन गई हैं। कनामो या कनिमो पीक काजा और किब्बर गांव के पास स्थित हिमालय की एक प्रसिद्ध चोटी है। ये अपनी ऊंचाई, कठिन मौसम और कम ऑक्सीजन के कारण ट्रैकर्स के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है। सिरमौर जिला के दूरदराज क्षेत्रों में लोगों के लिए आयुष विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट मददगार साबित हो रही है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों की जांच, उपचार और जरूरी टेस्ट भी मौके पर ही किए जा रहे हैं। इन शिविरों में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और आयुष पद्धति से उपचार की सुविधा दी जा रही है। अधिक जानकारी हमारे सिरमौर जिला संवाददाता से।
3: इन शिविरों में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और आयुष पद्धति से उपचार की सुविधा दी जा रही है। साथ ही विभिन्न प्रकार के जरूरी टेस्ट भी मौके पर ही किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए विभाग की ओर से अलग बजट उपलब्ध करवाया जाता है। शिविरों के बाद मरीजों की स्थिति पर नजर रखने के लिए फॉलोअप कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इस योजना के तहत नवजात और छोटे बच्चों की घर घर जाकर देखभाल की मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। जरूरतमंद बच्चों पर विशेष नजर रखी जाएगी और उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सीमा ने 24 जून से 28 जून तक उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर प्रतियोगिता में 10,000 मीटर की दौड़ में 34 मिनट 28 सेकंड और 75 मिली सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
4: एक ही राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसे आकांक्षी जिला चंबा के रेटा गांव की सीमा ने हासिल किया और समाज को ये संदेश दिया है कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। बहुत बड़ी बात है कि चंबा की धाविका सीमा ने एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर लिया है। सीमा का अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक भारत के लिए लाना है और ये प्रतियोगिता सितंबर माह में जापान में होगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊना, बिलासपुर जिलों में बीती रात रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं धर्मशाला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम साफ बना हुआ है। मंडी में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 1-2 दिन के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में पहुंचने की संभावना जताई है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सुक्खू बोले बड़ा बंगाल को बनाएंगे प्राकृतिक पंचायत, सड़क के लिए दिए 10 करोड़। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, सुक्खू ने बड़ा बंगाल में रचा इतिहास, दुर्गम क्षेत्र में रात बिताने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तीर्थ यात्रा से जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है, भूस्खलन का खतरा, श्रीखंड के बाद किन्नौर कैलाश यात्रा भी स्थगित। हिमाचल दस्तक की खबर है, बल्क ड्रग पार्क में 700 बीघा जमीन पर अभी तक नहीं हुई पेड़ों की गिनती। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, प्रदेश में 1 जुलाई को मानसून की दस्तक संभव, 1 से 4 तक भारी बारिश का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित सेब की अर्ली वेराइटी टाइडमैन पहुंची फल मंडी। बागवानों को मिल रहे अच्छे दाम। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए किया क्वालिफाई। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में झमाझम बरस रहे मेघ। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

तो इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारी बातचीत हो रही थी आज के दिन के इतिहास के बारे में। श्रोताओ, आज के दिन ढेर सारे लोगों का जन्म भी हुआ था, उनमें हम कुछ महान और ख़ास हस्तियों की बात करें तो 1864 में सर आशुतोष मुखर्जी, जो बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद और बैरिस्टर थे, का जन्म हुआ था। और साथ ही साथ 1893 की बात की जाए तो प्रशांत चंद्र महाल नोविस, प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक का भी जन्म हुआ था। तभी तो श्रोताओं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है मनाया जाता है। ये दिवस देश के सामाजिक, आर्थिक और विकास की योजनाओं में सांख्यिकी के महत्व में जागरूकता लाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ढेर सारी जानकारियाँ लिए आज का दिन भी है और उसमें सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के वास्ते हमारे देश में प्रत्येक वर्ष आज के दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद रोजाना की जिंदगी में योजना तथा विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और ये दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकी दिवंगत प्रशांत चंद्र महालो

बर्निस की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। और श्रोतो, ये तो थी जानकारियाँ। जानकारियाँ और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो आइए कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि जिला कांगड़ा के स्पेशल स्ट्रॉक फॉर्म ने जसूस स्थित शास्त्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समीप 3 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली, जिसके दौरान उनसे कब्जे में 223 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को सशक्त बनाने के उद्देश्य से गठित एसटीएफ जसूर क्षेत्र के नियमित गश्त पर थी, जिस दौरान उन्होंने आईटीआई के निकट चिट्टा तस्करी की विश्वसनीय सूचना प्राप्त की और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियां। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 परिषद और इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओ आगे बढ़ते हैं और आज के दिन की थोड़ी सी और बातचीत आपके साथ साझा करते हैं। 29 जून यानी आज के दिन को हम मना रहे हैं कबीर जयंती के रूप में। अक्सर कबीर के दोहे तो हम सभी ने स्कूल टाइम में पढ़े हैं और सुन भी रखे हैं, खैर उनको अच्छी तरह से जानते भी हैं और थोड़ा सा हम उनसे जुड़ी बातों को आपके साथ साझा करते हैं। कबीर जी के जन्म को लेकर इतिहासकारों ने बहुत सारे जो है अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन सबसे प्रचलित मान्यता ये है कि

वह कहते थे कि वे किसी के गर्भ से नहीं जन्मे हैं, बल्कि सन 1398 में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी के लहलहाते तारा तालाब में से एक कमल के फूल पर तैरते हुए शिशु के रूप में वो मिले थे। बहुत सारी बातें श्रोताओं कबीर दास जी के बारे में कही गई हैं, और उनका पालन पोषण जो है एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, और मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा ने किया था। जब शिशु का नामकरण उनके लिए एक काजी ने कुरान खोली तो बार बार कबीर शब्द जो है उनके सामने आ रहा था, और कबीर इस्लाम में अल्लाह के 99 पवित्र नामों में से एक था, जिसका अर्थ अरबी भाषा में महान और सर्वोच्च कहा गया है। और बिना बोले ही वे गुरु रामदास जी की दीक्षा भी ग्रहण करते थे। कबीर जी ने वैष्णव संत स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, और इस दौर में सामाजिक बंधनों के कारण ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। कबीर जी सुबह के अंधेरे में काशी के घाट पर सीढ़ियों पर लेट गए, जहाँ से स्वामी रामानंद स्नान के लिए गुजरते थे। अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर जी पर पड़ गया और उनके मुख से राम शब्द निकला। कबीर जी ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और जीवन भर राम नाम का सिमरन करते रहे। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ कबीर जी से जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा हम उन्हें भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो उज्जैन धर्मशाला।

श्रोतो, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम जो है गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, दोस्ती यकीन पर टिकी होती है, ये दीवार बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना किताब रिश्तों की, दोस्ती खून के रिश्तों से भी बड़ी होती है। जी हाँ श्रोताओ, खून के रिश्तों से गहरी और मजबूत दोस्ती होती है, तभी तो हम दोस्ती में अपने दिल की हर बात कह डालते हैं। जो बातें हम अपने परिवार के सदस्य से नहीं कह पाते हैं, वो दोस्तों से कही जा सकती हैं। शर्त यह है कि दोस्त जो है अच्छे होने चाहिए, सारा सही राह दिखाने वाले होने चाहिए, और हाँ, जिन पर हमें पूरा भरोसा हो उनसे ही अपने दिल की बात कहनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सारे अपने दिल की बात किसी दोस्त से कह डालते हैं और वो हमारी दिल की बातों का आगे तक पहुंचा देते हैं। तो श्रोताओ, थोड़ा सा विश्वास रखकर ही अपने दिल की बात किसी से कहनी चाहिए। इतना इंसान को परखने की समझ बूझ होनी ही चाहिए। इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ थोड़ा सा हम कबीर जयंती की बात कर रहे थे श्रोताओं, तो थोड़ा सा कबीर जी की मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर हिंदू और मुस्लिम शिष्यों में विवाद हो गया। हिंदू उनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शव से कफन हटाया गया तो केवल सुगंधित फूल मिले। शिष्यों ने उन फूलों को आधा आधा बांट लिया। आज मगध में कबीर की समाधि और मजार दोनों एक ही परिसर में बनी हुई है। जी हाँ श्रोताओ, बहुत सारी जानकारियाँ जो है कबीर जी से जुड़ी हुई है। थोड़ी सी और जानकारियाँ हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। कबीर जी ने कभी किसी नए धर्म या संप्रदाय को शुरू नहीं करना चाहा। वे केवल कुरीतियों पर प्रहार करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों को जीवित रखने के लिए उनके शिष्य ने कबीर पंथ की स्थापना की थी। आज देश भर के करोड़ों लोग कबीरपंथी हैं, जो कबीर के मार्ग पर चलते हैं और आपस में साहिब बंदगी कहकर अभिवादन करते हैं। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को थोड़ा सा हम फिर से कार्यक्रम में रोकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। तो श्रोताओं, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा नेताओं को के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा का कर्मचारी और अधिकारी विरोधी चरित्र एक बार फिर सार्वजनिक रूप से उजागर हो गया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का इतिहास कर्मचारी और अधिकारियों के हितों की अपेक्षा से भरा हुआ है, चाहे पुरानी पेंशन योजना का मुद्दे हो, चाहे कर्मचारियों तथा अधिकारियों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रश्न हो। और साथ ही साथ अनिरुद्ध सिंह तथा राजेश धर्माणी ने कहा है कि भाजपा नेता अब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके वैधानिक तथा प्रशासनिक दायित्व के निर्वहन से रोकने तथा उन पर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में हम रुकते हैं और लेते हैं एक अंतराल। अंतराल के ठीक बाद हम आप तक पहुँचाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कार्यक्रम को और थोड़ा सा बढ़िया बनाने की। तो श्रोताओं, कहानी एक शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में और साथ ही साथ ये कहानी इस तरह से है कि एक जो है गरीब किसान हुआ करता था और उसके दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। बहुत उदास परेशान रहता था, खेतीबाड़ी से उसे फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक दिन सुबह जगा तो उसने देखा झोंपड़ी के बाहर तालाब का हिस्सा था, उसमें बहुत थोड़ा सा एरिया था, बहुत थोड़ा सा पानी था, लेकिन उस पानी में कीचड़ में एक फूल खिला हुआ था और वो बहुत प्रसन्न हुआ। बड़ी मुश्किल से कीचड़ के बीच में गया और जाकर उस कमल को तोड़कर लाया और बाज़ार में ले गया कि शायद इसे बेचकर दिन भर की कमाई हो जाए। और पहुंचा वो बाज़ार में। बाज़ार में जैसे ही उसके हाथ में फूल लोगों ने देखा तो उस गांव में एक जो है महाराजा आए हुए थे। हर कोई चाहता था कि वो फूल उनसे खरीद ले और उसके लिए वो मोल भाव करने लगा। कोई उसे 2 सिक्के दे रहा था कि ये फूल मुझे दे रहे, तो कोई सेठ आ गया, उसने कहा 2 की बजाय मैं 10 सिक्के तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ चांदी के, तुम मुझे फूल दे दो। उसके बाद राजा के मंत्री आए, उन्होंने कहा मैं 1000 सिक्के देने के लिए तैयार हूँ, ये सिक्के मुझे दे दो। फिर उसकी समझ में आया कि जब मुझे 1000 सिक्के मिल रहे हैं तो क्यों ना ये फूल जो है मैं प्रभु तक अपने आप ही पहुँचा दूँ, यानी महाराज तक खुद ही पहुँचा दूँ। और वो चला गया महाराज के पास वो फूल देने के लिए और उसने महाराज से कहा कि महाराज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है वो यही है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लोग मुझे 1000 सिक्के चांदी के देने के लिए तैयार थे कि ये फूल मुझे दे दो। फिर मुझे लगा कि जब इतने में बिक रहे हैं तो क्यों ना मैं खुद ही जाके महाराज को ये फूल अर्पित कर दूं। तो श्रोताओं, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि भगवान लेने देने के भूखे नहीं होते हैं। भगवान हो या कुछ विद्वान हो, बड़े लोग हों या जिन पर दया दृष्टि ऊपर वाले की बरसती हो, उन्हें अगर हमारे पास संपत्ति नहीं है तो हम अपना सिर्फ एक प्यार ही उन्हें देते तो वो भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता है। हमने अपना जो कुछ था वो समर्पित कर दिया, इसी से प्रभु कृपा हम पर बरसी रहती है। मन के भाव अच्छे होने चाहिए, जब मन हमारा अच्छा होता है सब कुछ मिलता है। जिनके भाव पवित्र होते हैं उनका हित जो है हमेशा ही रहता है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी कहानी। इस कहानी के साथ फिर से हम कार्यक्रम में आप सभी तक पहुँचाते हैं। कार्यक्रम का ये गीत सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 में आए।
1: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आ चुके हैं और कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करनी है। उससे पहले दोस्ती पर कुछ प्यारे से शब्द अपने दोस्तों से कहना चाहेंगे। श्रोताओं, कहते हैं, एक फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। ज़िंदगी में मिल जाते हैं लाखों लोग, पर सच्चा दोस्त बार बार नहीं मिलता। जी हाँ श्रोताओं, वैसे तो हमें बहुत सारे दोस्त आपके जैसे अच्छे और प्यारे मिले हैं, तो आइए इस दोस्ती को और थोड़ा गहरा करने की कोशिश करते हैं और आप अपनी जो जानकारियाँ हैं आप तक पहुंचाते हैं। जिस काम के लिए, जिस मकसद से हम यहाँ पर आते हैं, उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो श्रोताओं, आज के दिन की हम बात करें, जैसे आज है 29 जून, 29 जून को हम मनाते हैं राष्ट्रीय कैमरा दिवस। ये दिन फोटोग्राफी के विकास और कैमरे के ऐतिहासिक आविष्कार, इसके साथ साथ जीवन के यादगार पलों को तस्वीरों में कैद करने के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सामने लाने के लिए मनाया जाता है। कैमरे के महत्व के बारे में तो श्रोता हम सभी जानते हैं कि जो कैमरा हमारी सुंदर सी तस्वीरों को खींचता है और साथ ही साथ उन तस्वीरों को हम सहेज कर रखते हैं, कभी जब फुर्सत मिले तो उन तस्वीरों को खोलते हैं, निहारते हैं, देखते हैं और खुश भी होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र श्रोता बहुत लंबा है। उसमें हम जो है अपने आप को देखते हैं तो कभी मुस्कुरा भी देते हैं, क्योंकि चेहरे बदलते हैं और बदलते चेहरों के साथ हमें अपने आप को या अपनों को देखना अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। और जब हम देखते हैं दूसरों को भी दिखाते हैं और खुश होते हैं। खैर, कहते हैं कि हर समय जो है टिकता नहीं है, थोड़ा सा ये समय बीता जाता है और वो समय को कोई भी पकड़ नहीं पाता है। और जैसे अभी की हम बात करें तो ये समय दोबारा नहीं आएगा, तो हमारी जो खुशियां होती हैं उनको हम कुछ कैमरे में कैद करके रख लेते हैं और फिर देखते हैं, बरसों के बाद भी उन्हें देखा जाता है तब भी खुश होते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में हम चले भी जाते हैं, जाने के बाद भी हम उन तस्वीरों को हमारे अपने जो होते हैं वो देखते हैं और अच्छा लगता है। तस्वीरों की बात हो रही है, कैमरे की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय कैमरा दिवस से जुड़े कुछ और जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं। इसके उद्देश्य की श्रोताओं बात करें तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य फोटोग्राफी की कला को बढ़ावा देना है, नए और पुराने कैमरों का सम्मान करना है और लोगों को बेहतरीन तस्वीरें खींचने के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रोताओं, तस्वीरों की बात करें तो पुराने समय की, तो पहले हमें तस्वीरें लेने के लिए फोटोग्राफर को घर पर बुलाना पड़ता था, लेकिन आजकल एक ऐसा यंत्र हम सभी की जेब में, हम सभी के हाथों में होता है। जब हमारा मन करता है हम तस्वीरों को ले डालते हैं। तस्वीरें प्रकृति से जुड़ी हुई हो, घर की हो, फैमिली मेम्बर्स की हो, खाते पीते डांस करते हर तरह की तस्वीरें हम लोग लेना चाहते हैं और फटाफट से अपना कैमरा निकालते हैं, हल्की सी स्माइल देते हैं और तस्वीरों को खींच लेते हैं। जी हाँ श्रोता, हंसी और मुस्कुराहट से थोड़ा सा दिमाग में बात चल रही है कि जब हम फोटो लेने के लिए थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं तो ज़िंदगी के सफ़र की अगर बात करें तो ज़िंदगी के सफ़र में भी हम हंसते मुस्कुराते हुए यूं ही चलते रहें, यूं ही रहें तो कितनी खूबसूरत सी ज़िंदगी लगती है। और हमें हंसता मुस्कुराता देखकर जब सामने वाले देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि अरे ये बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं। इसे ही सही मायने में ज़िंदगी कहते हैं। और वैसे भी हंसते मुस्कुराते हुए जीवन कब कट जाता है पता ही नहीं चलता है। तो श्रोताओं, इसी हंसी और खुशी को और थोड़ा सा गहरा करते हैं और रात तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ जानकारियां और आपके साथ हम साझा करते हैं। तकनीकी शिक्षा, आवास तथा नगर नियोजन तथा व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सतत संतुलित तथा सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए प्रभावी नियोजन और विभिन्न राज्यों की फसल अनुभवों से सीखना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि बेहतर नियोजन पद्धतियों के आदान प्रदान से प्रदेश की अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी तथा व्यवहारिक विकास मंडल तैयार करने में सहायता मिली है। रविवार को धर्मशाला स्थित रेडसन ब्लू रिजॉर्ट में टाउन प्लानर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नॉर्थर्स चैप्टर द्वारा आयोजित नीतिगत ढांचा और नियोजन प्रथाओं विषयक एक दिवसीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के हरियाणा में अपनाई जा रही श्रेष्ठ नियोजन कार्यप्रणाली का आदान प्रदान कर एक दूसरे को के अनुभवों से सीखना था। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियां भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल, अंतराल के ठीक बाद हम आप तक पहुँचाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं, हम इतिहास कैमरे के इतिहास की बात कर रहे थे। तो सबसे पहला व्यवहारिक कैमरा जो है 1855 में दुनिया के सामने आया था। शुरुआती दौर में तस्वीरों को कैद करने के लिए केमिकल और धातु की प्लेटों का इस्तेमाल किया जाता था और समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी हुआ है। पहले कैमरों का आकार बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ जो है इसके आकार में भी परिवर्तन हुआ और इसे केवल पहले पेशेवर लोग ही इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की, आज के समय में तकनीक के विकास ने इसे स्मार्टफोन के छोटे लेंस से लेकर हाईटेक DSLR से कैमरों तक पहुंचा दिया है। तो साथ ही साथ पहला कैमरा कब बना इसकी बात श्रोताओं अगर हम करें तो वर्ष 1826 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर्ड निप्स ने दुनिया की पहले स्थायी तस्वीर खींची थी। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 8 घंटे का समय लगा था। और भारत में इसकी शुरुआत की बात करें तो भारत में पहला कैमरा सन 1844 में तकनीक के आने के बाद कोलकाता में पेश किया गया था। और साथ ही साथ कैमरे के महत्व की और थोड़ा सा रुख करें, थोड़ी सी बात श्रोताओं करें तो कैमरे को सहेजना, कैमरे में हम लोग अपने खास पलों को, अपने खास तस्वीरों को खींच कर रखते हैं और दृश्य को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। बड़े और भारी कैमरों से लेकर आज के आधुनिक डिजिटल और स्मार्टफोन कैमरे तक इस तकनीक ने हमें देखने और सोचने के नज़रिए में थोड़ा सा बदलाव भी किया है। श्रोताओं, बहुत अच्छा लगता है जब हम यादों को, पलों को संजो कर रखते हैं और अपने कैमरे या स्मार्टफोन के कुछ खास और नई तस्वीरें क्लिक करते हैं, पुरानी याद पारिवारिक एल्बम को देखते हैं और अपनों के साथ इन्हें साझा भी करते हैं। फोटोग्राफी के इतिहास और इससे जुड़ी तकनीकों के बारे में भी बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं। और साथ ही साथ पहले के समय हुआ करता था तो पुरानी तस्वीरें एक दो कहीं पड़ी होती थी, अब तो ऐसा होता है कि बच्चे के जन्म से लेकर उसके बढ़ते बढ़ते हम ढेरों फोटो ले लेते हैं, ढेरों तस्वीरें लेते हैं, उन्हें देखते हैं और निहारते हैं। पुराने समय में कभी कभार कोई एल्बम निकालते थे तो उसमें कोई तस्वीर निकलती थी, उसे देखते थे। लेकिन आज के समय की बात करें तो पल भर में हम तस्वीरों को लेकर जो है अपने फ़ोन में इकट्ठा कर लेते हैं, एक दूसरे तक शेयर भी कर देते हैं और अपनों तक उसे पहुंचा देते हैं। और फ़ोन का इतना फ़ायदा श्रोताओं हमें हुआ है कि ना तो हमें फ़ोटोग्राफ़र को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है, हम खुद ही फोटोग्राफ़र बन जाते हैं और बढ़िया बढ़िया सी तस्वीरों को लेते हैं। और साथ ही साथ श्रोताओं होता क्या है कि तस्वीरों को लेने से हम अलग अलग कैमरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल अपने मोबाइल फ़ोन में हर तरह के कैमरे लगे हुए हैं और उन्हें हम लेते हैं, अपनी खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं, सुंदर दिखते हैं, सुंदर लगते हैं। और सुंदर दिखने की बात हो श्रोताओं, तो हर कोई आजकल के समय में चाहता है कि वो सुंदर दिखे। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी कैमरे की जानकारी और बातचीत, और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम कैमरे की बात कर रहे हैं। तो श्रोताओं, कैमरा जो है बहुत सारी तस्वीरों को लेते हैं, और जब कैमरे एक चुपचाप देखने वाली हमें मशीन है जो हमें देखती रहती है और हमारी तस्वीरों को लेती है, जो सिर्फ तस्वीरें नहीं लेती है बल्कि जीवन के पलों को, हमारे उसके पीछे की धड़कन को भी पकड़ता है, और साथ ही साथ हमारी मुस्कुराहट, हमारे आंसू, हमारी विदाई, जीत, जश्न और विद्रोह, हर एहसास को सबसे पहले सच्ची शक्ल में थाम कर रखता है, और साथ ही साथ किसी पल को हमेशा के लिए कैद कर पाना एक अनमोल तोहफे से श्रोताओं कम नहीं होता है। ऐसा उपकरण का इस्तेमाल करके बेहतरीन पलों को तस्वीरों के रूप में सहेजने की क्षमता हमें शक्ति भी देती है, और साथ ही साथ इस लिहाज से कैमरा हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। आज की पीढ़ी में हम आमतौर पर तस्वीरें लेने के लिए अपने कैमरे का, अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ये तस्वीरें लेने का सबसे तेज़ और आसान तरीका है।

हर कोई इससे तस्वीरें ले सकता है। आजकल एक छोटे बच्चे की ही हम बात करें तो छोटा बच्चा भी तस्वीरों को ले लेता है, क्योंकि बच्चे तो आजकल खाना भी फ़ोन के बिना नहीं खाते हैं। जब हम उनके हाथ में किसी फ़ोन को थमा देते हैं या तस्वीर लेने के लिए बोलते हैं तो फटाफट से वो तस्वीर को क्लिक भी कर देते हैं। ये तस्वीर जो है बहुत अच्छी भी किसी किसी फ़ोन में आती है, हर कोई फ़ोन जो है बहुत अच्छी बहुत बढ़िया और बहुत क्लैरिटी वाली तस्वीर नहीं लेता है। कुछ एक फ़ोन होते हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आती है। यूँ कह सकते हैं कि जो महंगे फ़ोन होते हैं उनमें तस्वीरें ज़्यादा अच्छी आती हैं, और जो थोड़े सस्ते होते हैं उनमें थोड़ी सी कम, बहुत कम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी माइनर सी क्लैरिटी नहीं होती है। और बहुत सारे ऐप फ़ोन में होते हैं जिनके माध्यम से हम रंग बिरंगी और ख़ूबसूरत अपनी तस्वीरों को ले सकते हैं, और इस तरह से हम अपने आप कैमरामैन बनकर तस्वीरों को लेते हैं। और कैमरे का आविष्कार भी हुआ था तब, इसमें बहुत कुछ शामिल था। कैमरे में आज जैसी उन्नत तकनीक नहीं थी, आज की तकनीक बहुत उन्नत है और हम सभी के सामने हैं, हम देखते हैं और तस्वीरों को लेते हैं और फिर निहारते भी हैं। उस समय ऐसा लगता है कि अरे ये कुछ समय की तो बात है कि ऐसे दिखते थे, क्योंकि जीवन का सफ़र लंबा है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी थोड़ा मुरझाया चेहरा लगता है, कभी हंसी के पल होते हैं, कभी खूबसूरत पल होते हैं, कभी अलग अलग ड्रेसेस हम पहनते हैं उसमें भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि श्रोता कहा जाए कि एक जो कपड़े होते हैं वो इंसान का रूप रंग ही चेंज कर देते हैं। तो अपने आप को बढ़िया सा बनाएं, खूबसूरत बनाएं और व्यक्तित्व को निखारें, फिर देखिए आप कितने अच्छे कितने प्यारे से दिखते हैं, देखने वाला भी आपकी तारीफ करता रहता है। और पिक्चरों से ही हर कोई देखता है और लाइक भी करता है, बहुत सारे लाइक कमेंट हमें मिलते हैं और हम जो है फ़ोन पर भी अपनी तस्वीरें डालते हैं। तो श्रोताओं ये तो थी हमारे कैमरे की बात, क्योंकि तस्वीरें हम लेते हैं कैमरे से, कैमरे की जानकारी आज हमने आपके साथ साझा की है। तो थोड़ा सा कार्यक्रम में फिर से रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आ चुके हैं और कुछ बातचीत और कर लेते हैं आपके साथ कैमरे के बारे में। फ़ोटो खींचना श्रोताओ रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आम हिस्सा हो चुका है। कैमरा आजकल एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यादें संजोने के लिए हम हमेशा पलों को कैद करना चाहते हैं और कैमरे के बिना ये संभव नहीं है। तो श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हमने ढेर सारी जानकारियां जो है आपके साथ कैमरे के बारे में जानकारी साझा की है और इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। तो अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो,
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मा।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा माँ, अच्छा माँ, अच्छा माँ। जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सिंधियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
3: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
4: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र।

0: एक्सक्यूज मी सर।
1: हाँ,
0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: आप लोग एचआईवी एड्स अपने पन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे हैं ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो,
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, संभियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं।
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके.
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
10: मेरा रिजन
11: कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
10: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
12: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
13: मोहित, मेरा इस्तीफा।
14: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
13: सॉरी यार,
14: काम कीजिए आप लोग।
12: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही यंग डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। इनका नाम अभिषेक है और ये भोपाल के रहने वाले हैं। दोस्तों, इनकी खास बात बताऊं कि इन्होंने अपनी मदर की जान बचाने के लिए मदर्स डे के दिन अपने लीवर का आधा हिस्सा डोनेट किया था। तो दोस्तों चलिए हम अभिषेक से बात करते हैं और इनकी कहानी जानते हैं और लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में और लीवर डोनेशन के बारे में इनकी राय जानते हैं। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: जी नमस्ते।
2: अभिषेक जी, जैसा मैंने आपके इंट्रो में बताया कि आप बहुत यंग हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी एज कितनी है, आप क्या काम करते हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, कहाँ से आप हैं।
3: जी नमस्ते, मैं अभिषेक सक्सेना, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। मैंने मैकेनिकल ब्रांच से 2020 पास आउट हूँ
2: जी।
3: और मैं मतलब मैकेनिकल फील्ड में ही जॉब कर रहा था एज अ क्वालिटी इंस्पेक्शन पे, लेकिन मेरी मदर की तबीयत खराब होने के चक्कर में मुझे वो जॉब छोड़कर आना पड़ा।
2: तो आप किसी और सिटी में जॉब कर रहे थे?
3: जी, मैं इंदौर में पीतमपुर में जॉब कर रहा था।
2: ओके, सो 2020 में आपकी इंजीनियरिंग कम्प्लीट हुई थी, तो आई थिंक आपकी उम्र अभी 20 साल होगी लगभग।
3: मेरी जो है 24 है।
2: 24, ओके, ठीक है। सो अभिषेक, चलिए बात करते हैं लीवर ट्रांसप्लांट की और लीवर डोनेशन की। तो आपने बताया कि आपकी मदर को लीवर की प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को डिटेल में बताएंगे कि कैसे इन सब की शुरुआत थी और लीवर ट्रांसप्लांट तक बात कैसे पहुंची?
3: एक्चुअल में ये हुआ था कि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था इंदौर में, मैंने अपनी मम्मी से बात की फोन पे। मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है
2: सडनली, आउट ऑफ सडन।
3: तो मैं गांधी जयंती थी उस दिन मैं अपने घर आया था, मैंने देखा मेरी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है।
2: क्या हो रहा था?
3: उनके पेट में पानी जमा हो रहा था,
2: पेट फूल रहा था,
3: पेट काफी फूल रहा था, पानी बहुत ज्यादा भर रहा था। तो उनका वेट जैसे नॉर्मली हम लोग देखते थे तो उनका वेट जो आता था 68-70 करीब आता था, लेकिन उस टाइम उनका वेट 75 के ऊपर ही था। तो हमें लगा शायद मशीन खराब होगी, फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए, ग्लोबल हॉस्पिटल भोपाल में ही बिट्ठल मार्केट के पास
2: जी।
3: तो हम वहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने उनका सोनोग्राफी करने को बोला। सोनोग्राफी कराया तो उनके पेट में पानी नजर आया। तो हमने कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये लीवर सिरोसिस है उनको। मैंने कहा लीवर सिरोसिस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो फिर उन डॉक्टर ने हमें बोला कि लीवर, जब लीवर की स्टेजेस होती हैं फाइब्रोसिस, राइब्रोसिस, इस टाइप के, ये एक सिरोसिस है, इसके बाद सीधा फेल हो जाता है लीवर। तो हम लोग डर गए, हमने कही कि अब इनको कैसे भी करके ठीक करना है। तो हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला आप इनको ठीक करने के लिए इनके वेट लॉस करने की कोशिश करिए, नमक कम दीजिए और उनका वेट ऑटोमेटिक सही होगा तो लीवर रिकवर करना स्टार्ट होगा
2: जी।
3: बट हमने पूरी कोशिश की, उनको डाइट प्रॉपर फॉलो की। मैं जॉब छोड़ के आ गया, मैंने जॉब के बारे में सोचा भी नहीं है, इससे बोल दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी मम्मी की ऐसी कंडीशन है मैं कंटिन्यू नहीं जॉब नहीं कर सकता। मैंने कही कि आप छुट्टी ले लीजिए, बट मैंने कहा मैं कितने दिन छुट्टी लूँगा क्योंकि ये बीमारी काफ़ी लंबी चलने वाली थी
2: जी,
3: जैसे हमें डॉक्टर ने बताया था। तो मैंने उनकी डाइट प्रॉपर फॉलो करवाई, उनका वेट अप्रॉक्सीमेट 65 तक लेके मैं आ गया था। फिर डॉक्टर ने सडनली उनकी कुछ रिपोर्ट्स देखी जिसके वजह से उन्होंने बोला कि इनकी जो पैरामीटर्स हैं वो बिगड़ रहे हैं। मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे इतने अच्छे
2: बिल्कुल,
3: से
2: बिल्कुल, कोई
3: मुझे इतने अच्छे से नहीं पता कि पैरामीटर
2: अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये सारी चीजें जो ट्रीटमेंट हुआ, दवाइयाँ चली, ऊपर नीचे हुआ वेट, कंडीशन सुधरी बिगड़ी, ये सब कितने दिन तक चला?
3: ये 2020 सितंबर से लेके ये 2021 के नवंबर तक ये चला।
2: एंड देन डॉक्टर्स ने फिर लास्ट चीज बोली
3: कि ट्रांसप्लांट
2: ही इससे पहले कभी आपने ट्रांसप्लांट के बारे में सुना था?
3: मैंने सुना था तो डर लगता था क्योंकि मैंने सिरोसिस के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, तो उसमें ऑप्शन तो आता था ट्रांसप्लांट का, लेकिन हम वहाँ ध्यान नहीं देते थे कि ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन होता है, बड़ा ऑप्शन होता है। कोई भी अपने फैमिली में नहीं चाहता कि इस ऑप्शन तक जाए, सोचते हैं कि मेडिसिन से ठीक हो रहा है तो हो जाए।
2: बट आपके केस में ये सिचुएशन आ चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ?
3: ये सिचुएशन ऐसे आई थी जब मतलब मम्मी की एनिवर्सरी थी, 22 नवंबर को उनकी एनिवर्सरी थी, हम लोगों ने एक अच्छा सेलिब्रेशन किया था, उसके जस्ट 6 to 7 डेज के बाद उनका एकदम से अमोनिया हाई हो गया था
2: जी।
3: अमोनिया जब हाई हुआ तो उनको सोचने के वो कॉन्शियसनेस उनकी खत्म हो गई,
2: डिसओरिएंटेड हो गई थी,
3: वो सोच समझ नहीं पा रही थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमें नहीं पहचान रही थी
2: जी।
3: मतलब वो कंडीशन ऐसी थी कि वर्स्ट कंडीशन थी हमारे लिए, हमने वो ऐसे अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा था कि हमें मम्मी को ऐसा क्या हो गया। उसमें उसको उनको ठीक होने के लिए जो लगता मैं वो करने को रेडी था।
2: जब डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट का बोला तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि फाइनली मतलब आपका डिसाइड हुआ कि आप डोनेट करेंगे जी। चलिए चलिए अभिषेक जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और श्रोताओं, छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आके अभिषेक से अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए, हम आते हैं एक क्विक ब्रेक के बाद।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आँखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आँखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे अभिषेक से, जिन्होंने अपनी मदर को अपने लीवर का आधा हिस्सा डोनेट किया था। सो ब्रेक में जाने से पहले अभिषेक ने बताया कि कैसे प्रॉब्लम डायग्नोज हुई और उसका सॉल्यूशन पता चला है, अभिषेक ने डिसाइड किया। सो अभिषेक, जब आपने डिसाइड किया ये चीज़, तो मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, क्योंकि आप तो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो और नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो आपको तो आपके मन में तो और ज़्यादा शंकाएं हुई होंगी कि मैं लीवर डोनेट कैसे करूँगा एंड क्या होगा उसके बाद की लाइफ स्टाइल क्या रहेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं, मम्मी की प्रॉब्लम कैसी रहेगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपकी मनोदशा बताइए, क्योंकि ये सब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये शो सुनेंगे उनके घर में भी हो सकता है किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो और वो भी उस असमंजस में हो, तो उन सभी लोगों को इस चीज़ से हेल्प मिलती है।
2: नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी मतलब लीवर डोनेट करते समय मुझे भी बिल्कुल भी एक बात की मतलब अपने आप को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लगी थी कि मुझे कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं जो हूँ मैं ठीक रहूँगा, मुझे 110% पता था इस चीज़ का। हाँ, थोड़ा सा मेरे को लोगों ने जरूर मेरे को बोला था कि नहीं तुम ये करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, कि तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बाकी है, अभी तुम ये करोगे तो मैं
1: कौन कौन लोगों ने
2: बहुत रिलेटिव्स दोस्त लोग और बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं तुम मत करो, तुम्हें जाना है। मतलब मेरे को एक्चुअली मेरे को डिफेंस में जाने का मेरा बहुत था। हाँ, डिफेंस में जाने में थोड़ा मुझे जरूर डाउट आया हुआ कि वहाँ नहीं जा सकता, बट मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दिक्कत होगी तुम्हें, बट मैंने वो सारी बातें इग्नोर करी। मैंने कहा ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। जो मैंने बहुत सारे पॉजिटिव एग्जांपल भी देखे थे, वो मैंने कहा 1% भी अगर चांसेस से ठीक होने का तो मैं 1% पे खड़े क्यों नहीं होता हूँ।
1: बिल्कुल, मैं भी आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इतने क्विक डिसीजन लेते हैं सिचुएशन में। जैसा आपने बताया कि आपने जॉब भी तुरंत छोड़ दी और पूरा फोकस अपनी मदर की हेल्थ पे दिया एंड देन क्विक डिसीजन लिया कि नहीं मैं ही डोनेट करूँगा, अपने बारे में ना सोचते हुए, अपने कैरियर, अपना फ्यूचर, सारी चीज़ें इग्नोर करके। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, मिथ्स जिनके मन में रहते हैं, मिथ्स के चक्कर में पड़ जाते हैं।

0: मेरे को मना किया कि आप मत करवाइए बच्चे, मेरे ऑफिस से मना किया।
1: जी। सो जब इन सब लोगों ने बताया और आपने उन सब चीज़ों की इग्नोर कर बातें इग्नोर कर दी, सो अब जब ट्रांसप्लांट हो चुका है, अब वो आपको देखते हैं तो आप उनकी जो सोच है उसमें कुछ चेंज आपको नज़र आया?
2: हाँ, उनने ये बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा हर हमारे भी बेटा हो तो उनको भी ये काम करना चाहिए, हम चाहते कि हमारे बच्चा भी अगर हो तो हमारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लेना चाहे, ये सब बहुत लोग बोलते हैं और चाहते हैं,
1: उन रिलेटिव्स का
2: सारे रिलेटिव्स बोलते हैं। बट अब जो मतलब मेरा जो एक प्रोस्पेक्टिव था, अगर मेरी मम्मी ही ठीक रहती तो आज मुझे बहुत
1: जी।
2: उस चीज़ से एक वो रहता कि
1: मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि अभिषेक ने अपनी मदर को लीवर डोनेट किया था, लेकिन बाय चांस कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से अभी मदर इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन अभिषेक अभी बिल्कुल ठीक है। अभिषेक, अच्छा आप श्रोताओं को ये बताइए कि जब आपने लीवर डोनेट किया तो पेपर वर्क क्या रहा और कितना टाइम इन सब चीज़ों में लगा,
2: पेपर वर्क।
1: क्या क्या दिक्कतें अगर कुछ आई हो तो वो भी बता सकते हैं आप, उनका हल भी बता सकते हैं। और
2: पेपर वर्क में हमें काफ़ी टाइम लगता,
1: क्या क्या
2: मतलब
1: किस तरीके का
2: जैसे
1: पेपर
2: पेपर
1: वर्क
2: वर्क ऐसा
1: था?
2: था, पहले इनसे परमिशन लेना,
1: जी हाँ
2: ये
1: जी
2: जीएमसी से गवर्नमेंट परमिशन लेना, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना, अपने आप को प्रूफ करना कि मैं इनका बेटा हूँ, हर चीज़ के सारे डॉक्यूमेंट में नाम सब चीज़ें, और मम्मी रेलवे एम्प्लॉय थी तो वो रेलवे से एफिलेटेड, मतलब उनसे टाई अप था, जिस
1: जी
2: मतलब ऑपरेशन होना था रेलवे के थ्रू ही उनको ऑपरेशन
1: जी
2: होता, तो रेलवे की को भी परमिशन दिलवाना हायर अथॉरिटी से, जो रेलवे के
1: जी
2: जो हायर अथॉरिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से भी उनको मतलब लिखवा के लाना कि हाँ इनको लीवर ट्रांसप्लांट नीडेड है, तब
1: जी
2: जाके ही मतलब ऑपरेशन आगे प्रोसेस होता। पहले रेलवे के परमिशन करवाया, फिर जीएमसी जो मतलब मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंटल हॉस्पिटल है हेड, उधर से परमिशन दिलवाया, पुलिस की वेरिफिकेशन कराई, फिर बंसल हॉस्पिटल्स के सारे जो कमेटी बैठी उनकी परमिशन दिलवाई, सबकी परमिशन के बाद करते करते कम से कम 4 से 5 महीने लग गए थे
1: इन सब चीज़ों
2: उन
1: में।
2: सब चीज़ों में। अगर
1: और
2: कोई मतलब ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगना चाहिए।
1: अगर हम खर्चे की बात करें तो करीब कितना खर्चा है इस
2: खर्चा
1: ट्रांसप्लांट में?
2: अप्रॉक्सीमेट 42 to 50 लाख जाता है कम से कम।
1: गया आपका
2: ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन का जो है वो 22 लाख का 20 लाख का ऑपरेशन होता है।
1: केस टू केस डिपेंड करता है खर्चा, आपको करीब 40 लाख 45 लाख तक पड़ा
2: फोर्टी
1: होगा।
2: फाइव लाख पड़े क्योंकि
1: जी
2: ऑपरेशन के पहले जो खर्चा हुआ वो कम से कम 7 से 8 लाख या 10 लाख जाता है, और ऑपरेशन जो होता है वो 20 लाख 22 लाख 20 लाख
1: ये
2: ट्वेंटी
1: सारे
2: लाख
1: फंड्स आपने खुद ने अरेंज किए या
2: नहीं, हमें अरेंज हमें मतलब रेलवे से टाई अप था तो रेलवे ने काफ़ी इसमें
0: साढ़े चौदह लाख
2: ऑपरेशन में 14 लाख 14 लाख की मदद की थी
1: रेलवे की तरफ
2: रेलवे
1: से,
2: की तरफ
1: क्योंकि
2: से,
1: आपकी मदर रेलवे एम्प्लॉय थी। ओके जी
2: बाकी पूरा हमारा ही उसमें अरेंज रहता है।
1: जी अगर हम थोड़ी सी मदर की बात करें तो ट्रांसप्लांट हो गया था उसके कितने दिन बाद ये चीज़ हुई?
2: ट्रांसप्लांट हो गया था, मैं जो डिस्चार्ज हुआ था वो 1 वीक के बाद मैं डिस्चार्ज हो गया था, 1 to 10 days, 7 वीक to 10 days में मैं डिस्चार्ज हो
0: चौदह
2: गया
0: दिन
2: था।
0: आप डिस्चार्ज हो
1: दो
0: गए?
1: हफ्ते
2: हाँ,
1: जी
2: 10 days में मैं डिस्चार्ज हो गया था, मतलब अप्रोक्सीमेट। मम्मी 27th को डिस्चार्ज हुई थी और
0: 9th को
2: नाइन्थ को डॉक्टर ने फिर एडमिट करने को बोल दिया था,
0: मंडे को।
2: क्योंकि मंडे को हमें बुलाया था कि आप आइए, आपके कुछ ब्लड टेस्ट पेंडिंग रह गए हैं वो आप आके कराइए। ऑपरेशन के बाद बहुत नाजुक कंडीशन थी मम्मी की, वापस ले जाके उनको टेस्ट वेस्ट कराना, तो वो टेस्ट कराने बकायदा चल के गई थी, सारे टेस्ट करवाए थे, फिर डॉक्टर ने बोला कि उनको कुछ बिलिरुबिन हल्का सा अप हो जा रहा है, तो उन्होंने कहा आप कुछ नहीं, आप उनको 1 2 दिन के लिए उनको एडमिट कर दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम उनको एडमिट कर देते, तो वो एडमिट कराया, फिर डॉक्टर ने बोला कि वो 1 हफ्ते में डिस्चार्ज हो जाएंगे, बस सिर्फ खाना नहीं खा रही है। तो वो 1 हफ्ते से वो 15 days हो गए वो खाना नहीं खा रही थी, फिर हमने भी मतलब हमारे जो कॉन्टेक्ट थे जिनके ऑपरेशन हुए थे हमने उनसे बात की कि ये हमने लीवर ट्रांसप्लांट कराया है, वो खाना नहीं खा रही है, ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, तो उन लोगों ने बोला कि कोई इंटरनल इन्फेक्शन होगा जो आपने शायद टेस्ट नहीं कराया। तो मैं गया था, मैंने डॉक्टर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इनका एक टेस्ट होना है CMV, बट उसको कोई कंफर्म नहीं करे कि इसको टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना है, उसको पेंडिंग में रखा। फिर मैंने थोड़ा गूगल करा, मेरा खुद ट्रांसप्लांट हुए 1 month नहीं हुआ था, मैं डेली हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था उस टाइम पे
1: जी।
2: मम्मी के जाके देखना, मेरे को बल्कि उल्टा बेड रेस्ट का समय था। मैं फिर मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला कि CMV टेस्ट वैसे करवाना है तो आप करवा लीजिए। तो हमने 15 जून को टेस्ट कराया था और उसकी रिपोर्ट आई थी 22 जून को, जिसमें वो जो जो इन्फेक्शन था
0: बस वो
2: CMV वायरस
1: पॉजिटिव।
2: होता
1: हाँ
2: वो इंडिकेट कर रहा था, जिसकी रीडिंग जो आई थी 15 तारीख को 4,000,
1: जी
2: मतलब 7 डेज में उसकी रीडिंग बढ़ गई थी, 16,000 के ऊपर पहुंच गई थी। तो हमने फिर 22 तारीख से उनकी दवाई देना स्टार्ट करवाई, कोई सी
0: दवाई इंदौर से मंगाई थी।
2: दवाई इंदौर से आती थी और फिर नहीं, दवाई इंदौर से नहीं आती थी, दवाई देना स्टार्ट करी। तो उनके दवाई 27 तारीख को फिर टेस्ट कराया, तो फिर उनके मतलब जो जो CMV वायरस
1: CMV
2: जो डिटेक्ट कर रहा था वो डाउन होना स्टार्ट हुआ। तो जब डाउन होते होते वो 16,000 से 12,000 पहुंच गया, और उनका जो लीवर रिजेक्शन हो रहा था, जो डोनेट हुआ था वो रिजेक्शन होता, वो भी उनका पॉजिटिव वे में जा रहा था, वो भी उनका एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो गया था,
1: रिजेक्शन।
2: क्योंकि वो वायरस की वजह से लीवर वो हो रहा था, रिजेक्शन हो रहा था,
1: हाँ
2: क्योंकि उनको इम्यूनिटी
0: ऑटो इम्यून।
2: ऑटो इम्यूनिटी डिजीज थी, जिसके चक्कर में उनको लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। तो फिर जैसे तैसे हमें रिपोर्ट थोड़ी पॉजिटिव मिली तो हमें अच्छा लगा कि शायद ये अब रिकवर हो
1: कंट्रोल
2: जाएगी।
1: हो
2: फिर
1: जाएगा या
2: 3 तारीख को हमें पता चला सडनली कि उनको बीच में एक चीज़ और कराई थी,
0: क्या
2: ट्रैको करके होते हैं, जिसमें मतलब सांस
0: गले
2: लेने
0: में
2: में दिक्कत हो रही थी, तो गले में कट करके यहाँ से मतलब सांस लेने,
1: ट्रेकिस्टोमी
2: हाँ
1: बोलते हैं।
2: ट्रैकोस्टोमी वो करवाई थी। तो उसके चक्कर में उनका बोलना भी बंद हो गया था।
1: बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुआ
2: मेरे
1: था।
2: हिसाब से अगर वो CMV टेस्ट अगर उनका टाइम पे हो जाता तो एक अंदर था कि वो शायद बच जाती, वो शायद लैक ऑफ मतलब मैं कहूँगा कि सिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि जहाँ पे सारी टेस्ट की रिपोर्ट फ्रिक्वेंट आ जाए, या टीम मतलब
0: टीम वर्क प्रॉपर नहीं
2: टीम
0: था।
2: वर्क प्रॉपर नहीं, क्योंकि जिन डॉक्टर ने हमें सलाह किया था ट्रांसप्लांट के लिए वो काफ़ी दिन शायद हॉलीडे पे थे उस टाइम पे, हम उनके कैबिन के बाहर भी जाते थे तो वो उस समय छुट्टी पे ही थे।
1: अभिषेक, यहाँ पर हम फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले अभिषेक की मदर की, तो चलिए हम फिर से अभिषेक से बात करते हैं और अपनी इस चर्चा को जारी रखते हैं। अभिषेक, ब्रेक में जाने से पहले आपने बताया कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, सो अब कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। तो आप कैसा फील करते हैं अभी, आपको कुछ कमी महसूस होती है? आपने लिवर डोनेट किया है तो, या कभी कुछ आपको परहेज करना पड़ता है, या कहीं से आपको ऐसा लगता है कि अब मैं उतना फिट नहीं हूँ जितना पहले था?
2: थोड़ा बहुत लगता है।
1: वो तो अभी आपका एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से, या फिर डॉक्टर्स ने बताया? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो लिवर डोनेशन के बाद आपका लिवर 3 से 4 महीने में पूरा ग्रो हो जाता है और अल्टीमेटली आप एक तरह से पूरी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं।
2: मेरे को ऐसा तो ज़्यादा नहीं लगता, ट्रांसप्लांट हुआ मेरे को इतना वीकनेस नहीं लगती, बट हाँ जो मतलब पहले जैसा मैं था थोड़ा सा चेंज आया है, बाकी मैं फिट हूँ।
1: वो सिर्फ मन का चेंज भी हो सकता है, धीरे धीरे आप नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे तो वो चीज़ हट जाएगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस देखे हैं कि
2: तो बाकी मुझे अंदर से ऐसा पछतावा मुझे ये रहता है कि अगर मैं अच्छी सिटी से करता, अच्छे हाई मतलब जगह से करता जहाँ की सर्विसेज अच्छी होती है, जहाँ के डॉक्टर्स मतलब पूरी टीम अच्छे होते, तो शायद
1: और अच्छा रिजल्ट मिलता।
2: मम्मी मेरे साथ होती है आज, क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से मतलब रिपोर्ट प्रॉपरली नहीं आई हमारे पास, जिसके चक्कर में लेट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई।
1: सो अगर हम बात करें इस पूरे कॉन्सेप्ट की, जो अंगदान है, जैसा शुरू में आपने बताया कि आपने डिसीज डोनेशन के बारे में आपने बोला कि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, तो मैंने ही डिसाइड किया कि डॉक्टर ने जैसे लिविंग डोनेशन के बारे में बताया तो मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि मैं डूंगा डोनेट करने। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंगदान को सपोर्ट नहीं करते, जिसके कारण से वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है, तो और जिसके कारण एक अच्छे भले हेल्दी इंसान को अपनी अंग दान करना पड़ता है। सो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मेरे हिसाब से तो हर घर में सबको, अगर आप फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको डोनेशन करना चाहिए,
1: प्लेज करना चाहिए, अंगदान का संकल्प करना चाहिए,
2: सबको देना चाहिए। मतलब ये गवर्नमेंट को ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि आप अपना बॉडी डोनेट करना चाहिए, आपको ज़रूरी है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बन जाएगी, किसी की लाइफ बच जाएगी, बहुत कुछ हो सकता है एक सिर्फ डोनेशन से। मैंने तो देखा आज के टाइम में लोग ब्लड देने तक से लोगों को मना करते हैं, बट करना चाहिए, ब्लड भी डोनेट करना चाहिए, बॉडी भी डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पे कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हमें पता चलता कि काश कोई कर दे, जब अपन जब दूसरे को करेंगे तभी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जिनको ज़रूरत होती है उनको ही उसका महत्व पता होता है, जिनको ज़रूरत नहीं होती उनको उसका महत्व नहीं पता होता। सो बिल्कुल, तो दोस्तों ये थी अभिषेक की कहानी। अभी अभिषेक बिल्कुल रिकवरिंग पीरियड में हैं, ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं, बिल्कुल अपने नॉर्मल डेली रूटीन के काम पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और धीरे धीरे और बाकी की लाइफ भी रिस्टोर कर लेंगे। चूँकि मदर अब नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव सा फील होता है, लेकिन होने को तो कोई टाल नहीं सकता, कोशिश तो पूरी करी थी हमने, अपना पूरा काम किया, बाकी भगवान को जो मंजूर रहता है वही होता है। बट एनीवे, अभिषेक को हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि उन्होंने क्विक डिसीजंस लिए और अपनी मदर की जान बचाने की कोशिश करी। एंड हम लोग हमेशा यही बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने अपने अंग दान कर दिए एंड उस सामने वाले की जान नहीं बची तो वो फेल हो गया। ऐसा फेल नहीं होता, अगर एक भी मिनट वो एक्स्ट्रा लाइफ उसने जिए हमारे एक यस कहने से तो बहुत बड़ा काम है ऐसा।

0: के बाद भी हो सकता है। अंगदान अगर हम कर दें तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां खुशियों से भर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी अंतिम क्रियाएं कर सकते हैं पूरी, कोई को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस फैमिली को, उस पेशेंट को जरूर फर्क पड़ेगा।
1: कम से कम
0: सो
1: 8 लोगों के चेहरे पे एक
0: बिल्कुल,
1: मुस्कान।
0: इसी इसी विनती के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले एपिसोड में हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए शख्स के साथ, उसकी कहानी जानेंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे। अभिषेक का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि अभिषेक ने इतना टाइम निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। सो अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिल के एक दिया जलाएं, एकता का परचम चह ओर फहराएं। आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिल के एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सीय उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, संध्यों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों?
4: सर, यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके.
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मेरा
10: कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा।
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
12: सॉरी यार,
13: काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 MHz ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोता 91.2 MHz ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो,
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सिंधियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके.
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
10: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
11: मोहित, मेरा इस्तीफा।
12: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
11: सॉरी यार,
12: काम कीजिए आप लोग।
10: HIV AIDS अपने पन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

कानवी दशमलव तो मेगा हर्ट्स पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक दशतों माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारे दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। शुरुआत अहां कर देना अपने कार्यक्रम दा इस प्यारे दे गीत कन्नै, फिर जेड़ा गल बात है से तुहां तक ले करी उन देना।

कानवी दशमलव तो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने दशो तो संगत का जिड़ा असर है से सबसे प्यारा है या हाँ अपनी जिड़ा संगत है से किस प्रकार रखते हैं दशो तो सुई जिड़ा से हमेशा अकेली चलती है सुई जड़े से हमेशा किली चलती है पर उसका जड़ा कर्म है सुई का जड़ा कर्म है से सिर्फ चुभना ही नहीं है इसका कर्म जड़े से बड़ा कुछ है पर हाँ अगर ध्यान ने सोच विचार कर देना या सुई का जड़े से क्या काम है अगर कोई कपड़ा है से फटिया वे उस जो सिलना है तो सुई जड़े से फटे कपड़े जो जोड़ी है तो इसी प्रकार हमारी संगत जड़े से अच्छी होना ज़रूरी है या अगर हम अच्छी संगत रखते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी जड़े से सफलता की ओर चलते हैं क्योंकि संगत का जड़ा असर है से हर किसी पर पौंदा अगर हम कॉलेज जाते हैं या हम स्कूल जाते हैं हम अच्छे दोस्त बनाते हैं क्योंकि दोस्ती का चुनाव जड़े से यहाँ खुद ही कर देना चाहे स्कूल जा देना तभी यहाँ दोस्ती का जड़ा चुनाव है से खुद करा देना अच्छे दोस्त हाँ जो सफलता दी ओर लेकर जाते हैं कने अगर हाँ गलत दोस्त का जड़ा चुनाव है से कर देना तो कुछ ही ना कुछ यहाँ अपनी ज़िंदगी जो सीमित करी देना अगर अगला जिड़ा व्यक्ति है से नेगेटिव सोच रखा दे कने हमेशा पॉजिटिव बोला देन हमेशा सकारात्मक सोचा देन तो कुछ ही ना कुछ ही नेगेटिव सोच जो हाँ साइड रखी करी अगर हाँ पॉजिटिव सोच रख देन तो हाँ अपनी ज़िंदगी जो ज़रूर जड़े से सफल बनाई पाते हैं दशो तो गलबात तो हाँ तक चलियो रहनी है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर च अहाँ कने जुड़ी सकते इस सफर माटी दी मेह कार्यक्रम दा तुहां तक रहंदा है 2 से 3 बजे तक तो इसी कन्ने इस सफर जो थोड़ा दिया फिरी ते अग्गे बढ़ाना है कन्ने समय दी अहां गल करिए बार बार अहां समय भी तुहां तक पहुँचाते रहेंदे न कि कार्यक्रम च समय हुण इतना होया कन्ने तुहां भी समय दे अनुसार जिहड़ा है इस कार्यक्रम च जुड़िया तो 2:17 कार्यक्रम दे सफर च होई है तो इसी कन्ने तो हाँ सारे भी इस सफर च हाँ कन्ने जुड़ी सकते जेड़ा स्टूडियो दा नंबर है सभी तुहां तक पहुँचाइंदे न नंबर है 7018117091 तो इस नंबर पर तुहां कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कने अजकना जिड़ा मौसम है से बड़ा ही सुहाना है कने तो हाँ अपने जिड़ा काम कार है न सभी करा दे होने न उरां दे जिड़ा काम मन से पियो न कने तो हाँ और भी लगा दे होने न कने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला भी इंजॉय करा दे न इसी कने आगे बढ़ दे न अगली फरमाइश तो हाँ सारे जो पता है कि ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है तो ये फरमाइश अहाँ तक पहुँची हो वह अगर अहाँ मोबाइल फ़ोन की ओर अपनी नज़र लगा दें तो ये फरमाइश अहाँ जो पहुँची हो वह व्हाट्सएप के माध्यम ने कने तिना दा ना वे स्माइली जी कने से रहने वाले न धर्मशाला ते तिना तक अहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचा दें तो हाँ सारे भी इस फरमाइशा जो इंजॉय करा

तुहां सारेयां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने। तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ी सकते, कन्ने अहां कन्ने गलबात जिहड़े से जरूर करी सकते। तो श्रोताओं, गलबात अहां करा देन कि संगत दा जिहड़ा असर है, संगत अहां अपने जीवन च या किस प्रकार जिहड़े से अहां अपनी संगत जिहड़े से रखते हैं। जिंदगी दा जिहड़ा सफर है, हर दिन अहां वास्ते एक नया मोड़ जिहड़े से जरूर लेकर आउंदा है। अहां दे माता पिता हमेशा अहां जो ये बोलते हैं कि अच्छे जिहड़ा दोस्त हैं से तुहां पढ़ा, क्योंकि कई बार जिहड़ा दोस्ती है ना से अहां जो अहां दे जिहड़ा सपने न तिना जो साकार करने च बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। कई बार अगर अहां कोई भी सपना है उस जो दिखते हैं कहने अहां अगर ये सोची करी चलते हैं कि नहीं अहां ते अहां कोई भी सपना सोचे अहां ते साकार नहीं होना है, कहने अगर अहां दे दोस्त या अहां दा परिवार अहां जो हौसला दिंदा है तो कुछ ना कुछ अहां इस सपने जो साकार जिहड़े से जरूर करी पाते हैं। तो एक हौसला देना भी बड़ी एक जिहड़ा अहां दी जिंदगी च अहम भूमिका अदा करता है। तो इसी कन्ने अहां कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है, कन्ने अगली जिहड़ा फरमाइश अहां जो आई हो वह वट्सएप दे माध्यम ने तिना दा नाम है इंदू जी, कन्ने से रहने वाले न सिद्धबाड़ी ते, तिना तक अहां एक गीत पहुँचा देना। तुहां सारे भी इंजॉय करा।

0: है तुह सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुह सारे ही सुनिया ए प्यारा दिया गीत, प्यारी दे फरमाइश। फिर ते हाँ वापिस आई हूँ अपनी गलबात ऊपर। तुह सारे भी अपना अपना काम कार जड़े से जरूर करा दे उन्हें न कने अपना रेडियो सेट अगर तुह ऑन नहीं कित्या तो तिस जो ऑन करी लिया कने तुह सारे जो ही पहले तो एक बारी फिर ते शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। क्योंकि स्वागत करना हमेशा एक अच्छी गल है, नमस्ते करना भी एक अच्छी गल है। क्योंकि ये अहां दे जिहड़ा संस्कार हैं से अहां जो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जलू बच्चा छोटा होंदा है तो उस जो हर चीज़ जिहड़ा है से पेरेंट्स सिखाते हैं कि नहीं बड़े ने गल किना करनी है, छोटे ने गल किना करनी है। कने बच्चे भी उस गल जो जरूर समझते न, सोच विचार करते न, या छोटे बच्चे जो अहाँ कोई भी काम बोलते न या अहाँ ही बोलते न कि कोई भी बड़ा है उस जो नमस्ते करनी है। तो शो ये तो अहाँ दे संस्कार हैं। कने अहाँ दा जिहड़ा व्यवहार है से किस प्रकार होना चाहिए सभी तो हाँ सारे जो ही पता है कि अगर अहाँ अच्छा व्यवहार रख दें तो कुछ ही ना कुछ ही अगर अहाँ हमेशा हर कोई चाहता है कि अहाँ अच्छे ने गलबात करन, अच्छा व्यवहार जिहड़ा से एक ही दुए अंदर रखन। पर आज के दौर की अहाँ गल करिए जिहड़ा व्यवहार की गल की, ये जिहड़ा अहाँ संस्कार की गल की, कुछ ही ना कुछ अहाँ जो दिखने जो नहीं मिलते, या घरे च गल करन या कुछ ही बार हाँ जानते न या अपने आस पास दिखते न तो ये बिल्कुल कम है। तो थोड़ा दिया पेरेंट्स जो मैं यही बोलना चाहती कि अपने बच्चे जो अच्छे संस्कार दिया, अच्छे अच्छा जिहड़ा व्यवहार है सभी जरूर दिया, क्योंकि यहाँ दी जिंदगी च बड़ा मायने रखदा। अहाँ कुछ ही जानते न तो अहाँ जरूर सबसे पहले अहाँ का काम होंदा कि कुछ जो विश करना है, विश करना जिहड़ा से है, चाहे से अहाँ नमस्ते कर देना, चाहे अहाँ गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जिहड़ा भी है से बोल देना, तो जरूर ये जिहड़ा छोटी छोटी गल्लां न से अहाँ दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा कर देना। तो शो तो जिहड़ा चीज़ां न कोई भी चीज़ां न अगर टूटी जांदियां न तो अहां तिन्हां दा इस्तेमाल जिहड़ा से बड़ी खूबसूरती कन्ने कर देन। अगर बादल टूटदे न तो स्याहां जो क्या दिंदे न, पानी दिंदे न, पानी दी जिहड़ा बुहार है स्याहां जो दिंदे न। कने मिट्टी टूटने ते जिहड़ा से मिट्टी जिहड़ा से टूटदी है तो से खेती दा रूप जिहड़ा से धारण करी लैंदी है। कने एक बीज टुटदा है तो से पौधे च अपना जिहड़ा संरचना है से पौधे दी संरचना जिहड़ा से बीज ने जिहड़ा टुटने ने होंदी है। इसी प्रकार अगर अहाँ खुद जो अगर टुटिया पाते न तो बिल्कुल अहाँ ये नहीं सोचना है कि अहाँ अकेले न, अहाँ कन्ने जिहड़ा ईश्वर है से जरूर अहाँ दा साथ जिहड़ा है से दिंदा है। कई बार होंदा ना कि अहाँ जिंदगी दा सफर है बड़े सारे जिहड़ा उतार चढ़ावन से चले रहिंदे, पर परिवार दा जिहड़ा साथ है सभी होना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि परिवार कन्ने अहाँ अपनी गलबात शेयर कर देन तो अहाँ दा जिहड़ा मन है से जरूर हल्का होंदा है। कने कुछ ही ना कुछ ही अहाँ खुद जो अच्छा महसूस जिहड़ा से करी पाते न। तो श्रोताओ इसी कन्ने अहाँ कार्यक्रम दे सफर जो भी अगे बढ़ाना है कने तुहां सारी भी इस कार्यक्रम माटी दी मह कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकदे। जुड़ने वास्ते बार बार अहाँ नंबर तुहां तक पहुँचांदे न, क्योंकि नंबर पहुँचाना हाँ दा काम है कने कॉल करना तो हाँ दा काम है। तो शो तो नंबर जरूर तो हाँ नोट करी लिया, फ्री ते नंबर है, नंबर जिहड़ा से मुझे लगा था तो हाँ पेन कॉपी जरूर पकड़ी ले आना है या अपना मोबाइल फोन जिहड़ा से जरूर पकड़ी ले आना है। नंबर है 7018117091। नंबर तुहां तक पहुँचाई तय कने बाकी काम हूँ तुहां दे। कॉल करा अपनी पसंद दा जिहड़ा गीत है से पहाड़ी गीत तुहां इस कार्यक्रम च सुनी सकदे। कने अहां दे जिहड़ा श्रोता ने सभी जरूर अहां जो व्हाट्सएप के माध्यम ने भी जिहड़ा से अपनी फरमाइशा भेज देन कने इसी कन्ने एक श्रोता जड़ा न सहा कन्ने जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी ठीक ठाक, आप सुनाओ।
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी। तुह कुथु ते बोला दे कने तुहंदा ना क्या है जी?
1: मैं कांगड़े तो बोला ही राधा कश्यप
0: जी। राधा कश्यप जी, क्या हाल चाल है कांगड़े वालों के? क्या काम कार छेड़े आज तुहां?
1: आज मैं काम लगाया ऊपर आम बता रहे हैं और मिठी खट्टी चटनी बना दी
0: जी। अच्छा अम्ब तोड़े कने दीदी क्या चटनी बनाना लाई है तुहां?
1: हाँ जी हाँ जी, तो खट्टी मिठी जी मतलब चाशनी बनानी नमक मिर्च वगैरह सब कुछ
0: जी।
1: गैस बचाई
0: जी जी। तो किस प्रकार तुहां हुण अंबा दी जेड़ा चटनी है से बनाना लगे थोड़ा दिया श्रोता तक भी पहुंचाई दिन जी?
1: से मैं एक साइड चाशनी बनाई चीनी दी
0: जी,
1: और एक साइड में वो बनाया कढ़ाई विच सोए
0: जी,
1: अजवाइन
0: जी,
1: नमक मिर्च मसाला थोड़ा दे तेल विच पाई किया
0: जी,
1: फिर चाशनी तैयार हुई, फिर अंब पाई के बीच बड़े छोटे छोटे पीस कटे है कतरियां बनाई
0: जी।
1: हाँ जी
0: जी, तो अंबा का जेड़ा मरब्बा ही बोली सकते हैं। हाँ इस जो
1: नहीं खट्टी मिठी चटनी नमक भी पाया मिर्च भी पाई मसाला भी पाया
0: जी। अच्छा नमक मिर्च भी पाया मतलब चटनी है खट्टी मिठी चटनी?
1: हाँ जी हाँ जी, खट्टी मिठी चटनी बनाई
0: जी। ता हाँ जो भी आना पौना खाना जी। ता अंब ज्यादा ने कि थोड़े नो साइड कांगड़े वाली साइड?
1: अंब ता बड़े ही लगे पर बंदर बड़े भारी सारे बड़े पेड़ ना अंब
0: जी जी,
1: पर ऊंचे बने हैं पर बंदर आई जंदे ने लंगूर आई जंदे कभी कभी
0: जी जी।
1: हाँ जी, पर लैंटर पर हाउस दे ऊपर उतार लेंदे ही
0: जी। ता चार भी पाई लिया अंबा दा तो हां कि नहीं पाया?
1: चार बाजार बिच बड़े चार वाले अंब है, चार वाला नहीं दशहरी अंब ने
0: जी। अच्छा जी जी, ता चार वाला अंब ली लोना पोना ताई चार पोना है ना जी?
1: बाजार आई है वैसे चार बनाना है मैं चार भी बनाना
0: जी जी, क्योंकि अपना जेड़ा घरे दी नेचुरल चीजा ना से सबसे बेस्ट होनी है ना जी।
1: हां जी, मैं लुंगड़ुए दा भी पाया चार
0: जी। अच्छा लुंगड़ुए दा चार भी पाया तो हां?
1: हां जी हां जी, और ही लगाई की बाकी ना सेम में उंगा बाना लेकिन और ही ठंडी करी तेल लगाई के और ही लगाई
0: जी। अच्छा ते और ही लगाई तो हां?
1: हां जी हां जी
0: जी, ता तो बड़ी अच्छी गल है जी। तो हां नेचुरल चीजा जो जेड़ा आहंदियां आम चीजा न तिना जो जरूर तिना दा सदुपयोग करा देना जी। आजकल आहां तो सब कुछ है सोचा दे कि रेडीमेड आहां जो मिली आना है दुकान जो आहां जो मिली आना है, मेहनत कुण करे ना जी?
1: हां जी हां जी,
0: मेहनत करना
1: जी। मैं कर दी दुकान पर हूं आजकल दुकान छड़ी थी मैं तो हूं घर दा काम लसा गया ना चार पया
0: जी। चलो अच्छी गल है जी, अपना काम कुथी ना कुथी हाँ। आहां जो खुद जो भी अच्छा फील होंदा ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता राधा जी, आज तुहां कुंदिया गीत सुनना जिड़े से पसंद करगे?
1: ओ गाना एक बड़ा प्यारा पर सा तपु लिया ने की पर ए गाई दियो तुसी सुन कांगड़े दिया लोका तेर शहर ज्वाला मंदिर वे
0: जी। अच्छा गीत तुहां सुनने सुन कांगड़े दिया लोका?
1: हाँ जी
0: जी जरूर राधा जी, तुहांदा ए गीत ए फरमाइश तुहां तक पहुंचा देन जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: धन्यवाद
0: जी। तो श्रोताओं तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने फिर ते अगे बढ़ते न कने तुहां जो लेख रि चलते न फरमाइश की ओर, क्योंकि कार्यक्रम फरमाइशी है कने थोड़ी देर गलबात करना भी जरूरी है। गलबात कन्ने गीत संगीत भी जड़े सियां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करदे। तो इस गीत जो तुहां तक पहुँचांदे न तुहां सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे सुनिया एक गीत ई फरमाइश। इस गीत की फरमाइश आहां जो आई हुए कांगड़े ते, कने तिना दा नां वे राधा कश्यप जी। तिना तक आहां ई फरमाइश पहुँचाई, कने तुहां सारियां भी इंजॉय की। फिर ते आहां वापिस कार्यक्रम के सफर च तुहां तक पहुँची हन। गीत संगीत की जड़ा धुन थी सभी तुहां तक पहुँचाई थी, कने अपनी जड़ा गलबात है सभी तुहां तक जरूर पहुँचानी है। तो श्रोताओं, मौसम की गल करिए, मौसम जिन्हें कि तुहां सारे जी पता था कि भीषण गर्मी जड़े से बड़ी ज़्यादा थी, पर कुथी ना कुथी हूँ जड़ा राहत है सियाहां जो गर्मी ते मिली है। गर्मी का जड़ा मौसम, वैसे तो मौसम जड़े से गर्मी का भी है, हूँ बरसात भी जड़े से शुरू होने वाली है। कने मौसम कोई भी है, हाँ हमेशा ये सोचते हैं ना कि बारिश हो जाती है, तो कुछ ना कुछ मौसम जड़े से यहाँ जो गर्मी ते राहत जड़े से जरूर दे है। तो इसी कन्ने अहाँ दे अगले जड़ा श्रोता न पहले तिना कन्ने कर दे न गल बात, से कुथू ते बोला दे, कने तिना दा ना क्या।
1: राम राम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: हां जी
0: जी, तुहां कुथू ते बोला दे, कने तुहांदा ना क्या है जी।
1: मेरा नाम है जी अंकित, आहे बोले दे बिलासपुरा ते।
0: जी बिलासपुरे ते बोला दे अंकित जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। अंकित जी, क्या काम कार तुहां लगाया, मौसम के दे है बिलासपुरे दा।
1: मौसम जी ऐसा ही है, सुबह बारिश थी, अभी ठीक है मौसम।
0: जी ता तो जे कार्यक्रम कदे लगता माटी दी महक।
1: कार्यक्रम जी बहुत ही अच्छा लगता जी, मौज आई जंदी।
0: जी अच्छा, रोज ही सुन दे।
1: हां जी हां जी, रोज सुन दे
0: जी। नई ताजी बिलासपुर दी और
1: नई ताजी ता कुछ नहीं जी, बरखा हो गई है, थोड़ा काम कार बदल जाना है।
0: जी ता क्या क्या काम कार जड़े से तुहां चलाया, खेती बाड़ी दा क्या।
1: खेती बाड़ी दा ले रह गया जी, छलियां बाणियां खेता मक्की।
0: जी अच्छा, छलियां बाणियां न।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। और बाकी क्या क्या लगांदे तुहां।
1: बाकी जी भिंडी लगांदे
0: जी,
1: खीरा लगांदे, कद्दू लगांदे, सब कुछ लगांदे
0: जी। अच्छा सब कुछ।
1: हाँ जी हाँ,
0: बस धान नहीं लगांदे ना जी उस साइड।
1: नहीं जी, धान नहीं लगांदे, पानी नहीं होंदा इतना।
0: जी पानी नहीं होंदा।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो इस साइड तो धाना का काम जिड़ा से पिया ना जी, वो लगाने का काम।
1: हाँ जी पया तो है, पर इतनी लगाते नहीं ना अपने।
0: जी जी, उस साइड नहीं लगाते ना, उस साइड तो छली ज्यादा चलती ना जी।
1: हाँ जी लगाते, पर बहुत कम लगाते, उपरला लग के लगाते, थोड़ा मंडी वाला साइड लगाते।
0: जी जी अच्छा, लगाते पर बड़ा कम जिड़ा से लगाते।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो अंकित जी, आज तुहां कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
1: आहारिया जी दो फरमाइश है जी, एक पौना हरी जोगी हो गया और दूजी फरमाइश जी आहारी गंभरी वाला गाना
0: जी। पहली फरमाइश जी, तुहां एक ही फरमाइश जिहड़े से कार्यक्रम च करी सकदे जी।
1: ते लाए दो जी गंभरी वाला गाना, बिलासपुर वाली गंभरी वाला गाना।
0: बिलासपुर दा गंभरी वाला गाना।
1: हाँ जी हाँ
0: जी, जरूर है गीत तुहां तक पहुंचांदे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: तुम्हारा भी धन्यवाद जी।
0: जी ये तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारी कार्यक्रम सुना दे ना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। तो तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहां कन्ने जुड़ी सकते, कन्ने अहां कन्ने गल बात जिहड़े से जरूर करी सकते। तो मौसम दे उपर अहां अपनी जिहड़ा नज़र है से जरूर दौड़ा दे थे कि मौसम जिहड़ा से किस प्रकार रहने वाला है। गर्मी ते जिहड़ा राहत है से जरूर अहां जो मिली हो है। कन्ने 30 जून की अहां गल करिए, मानसून की जिहड़ा आहट है से महसूस होने की जिहड़ा संभावना है से नज़र आती है। कने 1 जुलाई ते अहां गल करिए, मानसून जिहड़ा से हिमाचल प्रदेश च पहुंची आना है।

कन्नै 1 ते 4 जुलाई तक जेह्ड़ा इस कई हिस्सों च बारिश का जेह्ड़ा अलर्ट है से जरूर दस्या है। तो मौसम के अनुसार तुह जरूर अपनी सेहत का ख्याल रखना है, कन्नै जेह्ड़ा किसान हैं तिना जो थोड़ी राहत जेह्ड़ा इस जरूर मिलनी है, क्योंकि से इंतजार करा दे कि कलू दिया बरखा होंदी है, कन्नै कलू दिया हाँ अपने जेह्ड़ा काम मन से कर दे। तो इसी कन्नै हाँ अगे बढ़ते न, कन्नै अगली जेह्ड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न। तो सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया एक गीत। इसी गीत कन्ने हाँ फिर ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कन्ने तो हाँ तक अगली जेड़ा फरमाइश है से पहुँचाते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, समझियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
10: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
11: मोहित, मेरा इस्तीफा।
12: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
11: सॉरी यार,
12: काम कीजिए आप लोग।
10: HIV AIDS अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

0: मोहब्बत।
1: गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सिंधियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं।
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात। तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके.
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: मेरा
10: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन?
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
12: सॉरी यार,
13: काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपने पन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला।

श्रोतों एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बीच यून कर रहा हूँ सचिन कपूर हाजिर बुझुआ कार्यक्रम लेकर हिंदी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है जनाब हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा क्या हाल चाल है तुंदे उम्मीद कर नो होप सो हाल चाल खरे भुने ठीक भुने तंदुरुस्त भुने और असुइए खरे भुने असुइए खरे भुने वास्ते श्रोतों अपने आप जो खड़ा करना बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल जो कि पहले आया है सब किए सो अपना ध्यान रख दे जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में शो तो अपना ध्यान रखना किया सो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना किया सो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ना। और एक ये शो तो यही ज़िंदगी है ये ज़िंदगी की आंसू बढ़िया चल दिया अगर तो है ध्यान दून प्रॉपर रख देता ये धर्मशाला और धर्मशाला का मौसम तू वो पता कि बड़ा प्यारा बंदा ला जनाब बड़ा गुड बंदा धर्मशाला का मौसम है ना। तो फिलहाल है फेसबुक रे माध्यम तो मैं लाइव किया सो चली देन और तू होगी गलबात किया सो कर लेन देन। तो चलिए तो ये सब ये ट्यून कर रहा है इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला और हूँ सचिन कपूर जी जनाब बिल्कुल हाजिर हाँ कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर ही अपने बहुत सारे श्रोता सोगे और अपने गीत संगीत सोगे अपने लोक गीता सोगे और सोगे सोगे श्रोताओं कुछ एक खास जानकारी सोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुंदी न असू सब भी वास्ते है ना जानकारी तो हूँ किया सो इन बहुत सारे श्रोता के सो अपडेट बुझे हिन्न और खासकर इस कार्यक्रम इंतजार इसलिए कर दें श्रोतों के मतलब अपने गादे बोली अंदर के आसो जानकारी है सो हिरने जो मुड़े गंदी हुने जो भी मुड़े गंदी और फेसबुक रे जरिए हिरने जो भी मुड़ी गए छुकर दिन जनाब आजकल है ना जमाने अनुसार सो भी ढलना पैना ना पहले सीधा लाइव ही करते थे अपने रेडियो मंच है ना इन जो शक्ल है सोना उस दी थी क्या है क्या करो कर दें क्या बल्लू कर दें क्या कमाओ कर दें क्या इन एक्सप्रेशन हिंद आजकल तो वो सब भी रहो जगह छो करते हुए एक्सप्रेशन है ना और कौन कदे या कौन कदे सो सब तो ये रू करते हुए फेसबुक रे माध्यम तो है ना। तो चलिए तो गलबात शो तो इन दी चलते रहने हैं बहरहाल यकीन बुझगो ना क्या है धर्मशाला में रेव करते हैं हाँ हेरे लिया थोड़ी देर पहले गया सो करीबन करीबन 2 बजे काफ़ी ज़्यादा बरखा गया सो भोया है ना कुछ एक क्षेत्र अंदर भोए बुने कुछ एक माँ ना भोए बुने और तत्थों बाद हब जो फिरे किया सो धूप लगी पे है तो ये धर्मशाला हा इतिय बल्द है धर्मशाला की तो है बारिश आनंद भी लेव करते है तो है तो पर आनंद भी लेव कर दे गर्मी रे आनंद भी लेव कर दे और पल भर में ठंड भी सो बुझगन दिया ते धर्मशाला जनाब इतने बहुत सारे श्रोता असू के कनेक्ट बुझगन जनाब तो सब भी जितने भी असू हिरदन सो कनेक्ट पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम मंच अपने गादे कार्यक्रम मंच करना क्या करना कुछ नहीं जनाब फोन चुका और नंबर डायल करा 701 8 8 7 0

0: শতো এফএম ব্যান্ডে 91.2 লাভা 2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন তা তো হেটি উনকো রয়ে জনাব তা কল করি সকদেন 708-8-8-709 পর নম্বর আক মোকে ফিরে দিন নো জি জনাব জুড়েন তো কল করে সকদেন 708-8-8-709 পর তো সব শ্রোতা কল করে সকদেন আর আপনা পসন্দিদা গীত কিয়া জনাব সো জরুর তো হ্যাঁ হনি সকদে হিন হ্যাঁ না আর सिसोगी शो तो ये कार्यक्रम जो थोड़ा करे आगो बढ़न देना है और कार्यक्रम मंच अब थोड़ा करे और आगो चल देना शो तो इन शो तक जुड़ू करते थे हाँ बिल्कुल जुड़ गया हिन ता अब नोए शो तक इन सो असोगी जुड़े जनाब पूछ लेन देन कौन बल्लू कर देन और कड़ी थो बल्लू कर देन है तैयारी के इनसो दो साइडों करना पेंदी आजकल असू चलिए जी
1: हेलो
0: नमस्ते जी
1: नमस्कार जी
0: नमस्कार जी नमस्कार कौन बलुंदन और कड़ी थों बलुंदन थोड़ी के रेडियो सेट रही आवाज धीमे कर दिया जी ऐसा डबल होने को कर दिया
1: अच्छा अच्छा
0: जी
1: ठीक है
0: हाँ जी जी कौन बलुंदन और कड़ी थों बलुंदन
1: थात्री हूँ
0: थात्री तो हूँ क्या ना जी तुम दशुभ ना
1: ज्ञानचंद
0: ज्ञानचंद जी क्या बात है
1: अच्छा
0: ज्ञानचंद जी तुम दर ना ज्ञानचंद कुणी रखुरा मम्मी डैडी है दादू दादी है कुणी रखुरा
1: माँ बड़े रखुरा है
0: माँ बड़े रखुरा
1: हाँ जी हाँ जी
0: तुसु बड़ा ज्ञान बुना ता है वखुरो बुना ना सभी इंटेलिजेंट बुने तो है फैमिली अंदर
1: पहले मेरा ना राज थोड़ा राज
0: क्या बात है राज भी बड़ा बढ़िया ना तो
1: फिर सो थोड़ा खरा लग तो ये ना फिर ये ना बदली तो मेरा
0: रास्ता बड़ा बढ़िया ना तो राज करना तो दूसू आज
1: ब्राह्मण बदली तो हो ना मेरा
0: ब्राह्मण बदली था ना
1: ये खरा ना बहुत थोड़ा
0: अच्छा अच्छा चलिए
1: हाँ जी हाँ जी
0: इस समय भी खरा ना तुंदा
1: अरे ठीक ही रखा हुआ है
0: ना ना अबे चलो बोलना जो आस हो आ उम्र था बता ही देते अबे ना
1: हाँ जी
0: उम्र था गुजार ही देते बोलना अबे
1: हाँ जी आखते इल्लड़ वाले में बना हुए
0: हाँ जी
1: इल्लड़ इल्लड़
0: हाँ इंग्लैंड तो बोना चाहिए है जॉन फिफ्थ मानना और हाई अलर्ट पर है इस समय इंदा हिमाचल खासकर इंदा बागसू
1: हाँ जी
0: मैकलोडगंज धर्मकोट एरिया क्या ने हाई अलर्ट पर न इवन की धर्मशाला भी हाई अलर्ट पर है जनाब
1: हाँ जी खतरा ही है वहाँ
0: ए तो है जो जिंदगी जेल है ना सो जेल है वे इंदी बारी खतरे खुतरे बड़े मंडराव कर देने
1: हाँ जी हाँ जी तो ठीक बोलते हैं हाँ
0: आई वैसे
1: जी
0: रेड अलर्ट पर है ना हिंदा धर्मशाला तो वैसे रेड अलर्ट पर है जोन 5 में हिंदा भूकंप था हीना हीना और 1905 भूकंप था वो सब भी हो याद है हजारा लख मनोरी जान चली गई है ना बहुत सारे घर
1: दोबारा दोबारा फिर हुआ तू क्या 86 में कौन हुआ तू
0: हाँ जी हाँ जी लेकिन चलो
1: सो ये
0: जो
1: बारी है
0: सो भी भारी बचूरा लेकिन जो 1905 वाला भूकंप है ना जनाब सो
1: असो
0: तो
1: मा
0: इतिहास रे पन्ने में ऐसा छपरुआ कि आज दिन तक तेरा दर्द किया सोना गंदा
1: एड़ी मते आज मरी आई है बंदे
0: बहुत ज़्यादा मनु मरे थी ये चलिए
1: क्या
0: हेरा ना
1: पता
0: भूकंप ईना की नहीं अबे तो हेरा कि धर्मशाला में कितना मतलब कितनी ओवरलोडेड कंस्ट्रक्शन किया सो बुच्चू कर दिया है ना
1: हाँ जी हाँ जी ठीक बोलते हुए
0: बहुत ज़्यादा ओवरलोड कंस्ट्रक्शन हाँ
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: ऊपर तो है नजर मारा जी भागसू कनारी धर्मकोट कनारी है ना
1: जी
0: कर कर डंगे लुड़ू कर देन बिल्डिंग आरी बिल्डिंगा बनू कर देन
1: ठीक बोलते हुए
0: और तो है रे कि इस रोड मा मतलब जो धर्मशाला कचहरी वाला रोड है भाया योल बुच करी जो पालमपुर जोगंदा इस
1: हाँ जी
0: रोड में कितना ट्रैफिक है पहले ऐसू धर्मशाला गाने हो ना कम से कम ये बंदे थी 15-20 मिनट आज भी रात थी अगर तो है 10 बजे बाद धर्मशाला गांता 15 थों मतलब 10-15 मिनट अंदर धर्मशाला की चलाना लेकिन सेम अगर तो है दिन गांता तो कम से कम 1.25 घंटा लग गाना धर्मशाला पुजते पुजते
1: बिल्कुल ठीक है ट्रैफिक
0: क्योंकि
1: की बड़ी
0: ना
1: भारी है
0: ये चक्कर की है मांजरा की आ ये मांजरा है कि ये रोड तक तहने रे बन रहे ना भाई जहने धर्मशाला री पॉपुलेशन के थे सो घाट थे है ना
1: हाँ जी हाँ
0: इतने
1: जी हाँ
0: घर
1: जी
0: ना थी है घर बार ना थी है
1: हाँ
0: इतने
1: जी
0: मतलब दाड़ी में ते घर ना थी है बड़ोली में ते घर ना थी है श्याम नगर
1: हाँ
0: में ते
1: जी
0: घर ना थी है ना योली में ते
1: ना
0: घर
1: थी ये
0: ना
1: ना
0: थी
1: थी
0: है ताए तूना करे रोड थो बड़ा उड़ा अबे तो
1: बड़ोली
0: है ना
1: वाली बता इनके सामने घर पे है सब
0: हाँ तुंदे सामने अभी तुंदे सामने रे गल है कि कितने घर के ना सो पे गए ना।
1: दाढ़ी मते वो हो कंडी मते
0: हाँ कंडी पे थे तो ये रोड तो
1: कंडे
0: सो है
1: ओ
0: पर ट्रैफिक तो ओवरलोड बुझेगा ना बे।
1: ओवरलोड ओवरलोड ठीक है सर।
0: ट्रैफिक तो ओवरलोड है।
1: एरा छड़ दिया खनहरे खनहरी बाटे में रोड क्रॉस करना फंस गया
0: सोच ही लिया तू
1: ये
0: है।
1: खनहरे वन जी। हाँ बराबर ट्रैफिक का गुस्सा भी ना कोई
0: हाँ ये लिया और तो है जाने हल्के हल्के बुने था ना तो है सो दृश्य जरा सु दस्ता लग जाने तो हल्के हल्के थी जनाब।
1: दैड़ी उधर आका तो बस हिंदी का खनहरे आका तो बस हिंदी दे जीप पर जाप ये बाटी ऑल्टो वगैरह कार वगैरह ये कड़ी बंदी आई नहीं। हाँ
0: ना थी हाँ
1: जी हाँ जी
0: खनेरे खनेरे आज भी खनेरे अंदर आज भी अबे कुछ टाइम था वो ट्रैफिक नहीं था खनेरे रूट के सो दानू में तक गंदा बाइक है ना
1: हाँ
0: यार
1: जी हाँ जी
0: गंजर
1: हाँ
0: मा दे
1: हाँ
0: ये रूट भी बड़ा शांत रूट थो
1: बड़ा बड़ी शांत है। हाँ
0: है ना मजे चलिंदा थो लेकिन अबे इस रूट मा भी किया सो बड़ी गड्डी के अंसो दौड़ू कर दी ना।
1: इन दे सामने जीप पर जापा ना हुंदी ना कोई याद करके आका तो हुंदी करके। हाँ या आक बस हिंदी खने रे आक तो ही बस हिंदी बस
0: अच्छा।
1: जीप पर जापा दावे चली थोड़े साल हुए। हाँ
0: हाँ थोड़े थोड़े घट साल हुए ठीक बोलन दे तू
1: जी हाँ जी ध्याड़ी पहनना पुना होंगी थी पहनना पुना हम करके करके ये
0: करके करके। हाँ
1: फोन फार कुछ भी होंगे ही है
0: ना बंदे थी। हाँ
1: ये दुबे फोन होंगे करके घर में तड़ी गंदे फोन फार करके कर दे ना फोन ना
0: हाँ जी हाँ जी टेलीफोन है
1: ता
0: ना।
1: तड़ी है गाना ते आए ये फोन फार तो थोड़े साल चलो सब कुछ। हाँ
0: हाँ थोड़े साल चलो
1: जी हाँ
0: तेरा
1: जी
0: जी वक्त की असु क्यों करे बदले गंदा क्यों करे परिवर्तन करदा है ना। पहले
1: आओ
0: जनरेशन
1: तो
0: भी ना थी इतनी अबे मतलब अबे भी जनरेशन भी बड़ी तेज वो छोरे या पहले भी जनरेशन बड़ी
1: बड़
0: शरीफ बुंदी थी पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा की असो बढ़ गया तो ये चीज़ें बदली
1: बड़
0: नहीं
1: शरीफ
0: तेन।
1: थी ये पहले तो बढ़िया थी ये मोटा सोटा खाना सो घर रहे। हाँ जी अब घड़ी है तो हाँ
0: ना बिल्कुल
1: जी
0: खड़ी
1: तैयारी
0: चलिए ठीक है जी कुंडली
1: को तैयारी
0: जी
1: को कपड़े कपड़े को स्टैंडर्ड ना दो जड़ा मर्जी लाल मोबाइल तो लाए लेंदे ही है
0: लाई लेंदे थी है
1: जड़ा मर्जी
0: जड़े मर्जी अबे लाई करके चला
1: घड़ी
0: जड़े मर्जी अबे तुंदी तो है
1: बड़ा
0: खरा ना लव पूरा बुला था मतलब सौ मनु इन जो तुसो जानता नहीं तस भी तुसो ना रखी ने। हाँ
1: बिल्कुल ठीक बोलते तो है। हाँ
0: और पहले कस्यो इतना मतलब ना तो कस्यो ना सो मैले मणु थी है ना सौ गल्ला रिया का गल मैले मणु थी है।
1: बड़ा बढ़िया टाइम तो पहले हो अक दो ही कमरे वाकर के अक्के कमरा हुंदा करी दो ही हुंदे ही ये टब्बर पाली जंदा तू।
0: पड़े गंदा था ना।
1: हाँ जी हाँ जी अब जितने खुले मकान बने इतनी जगह घट के छोड़ दी है। हाँ
0: चलिए दस्तूर है जिंदगी रहे।
1: जी हाँ जी हाँ जी
0: जी जनाब कुंदन की थोड़ा पसंद कर ले। अच्छा
1: शिव जी नवाड़ा होना ही दे कोई। हाँ जी
0: ठीक है जी धन्यवाद
1: ठीक है धन्यवाद ओके जी ठीक है
0: धन्यवाद
1: ठीक
0: जी।
1: ठीक है ठीक है।
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून गुरु और एक कार्यक्रम है हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव चल रही है जनाब तुम सब भी रहे रेडियो उस सेट माता चलिए कार्यक्रम जो आगो बढ़ंदे हिन और फिलहाल तो वो उन दिन तुम्हारी फरमाइश मंच ये प्यारे दिया।

गीत और श्रोतों सुसोगी की आसो फिर मुलाकात करते हैं इंदे जो फेसबुक रे श्रोतागण जो रेडियो मंच भी असु हुंदे हैं और आजकल फेसबुक रे माध्यम तो भी गया सो सोगी कनेक्ट हो चुके करते हैं। तुसोगी बंदन थोड़ी देर बाद फिर ही रूबरू कुछ एक खास जानकारी लेकर बने रहे जुड़े रहे आरजे सचिन कपूर सोगी हूँ अपने पन रे।

से गीतरा आनंद की सो है हजरूर लल्ला स्वाग प्रतिशत की सो लल्ले सो तो बहरहाल तो ये सब बन रहे हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो के कॉल कर सकते हैं जनाब 7088 8809 पर नंबर आख मुके फिर यूँ शेयर करनो साझा करनो तो सो के 7088 8079 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं। बड़ा प्यारा गीत था और बड़ा अच्छा संदेश है इस गीत अंदर, खासकर संदेश यह है गल कर दिन कि चिट्टे की सो रोल दिती जवानी लोग को है ना, और बड़ा ज़रूरी है कि यह सब के अनसो सतर्क बुझगान, यह सब के अनसो थोड़ा करी तेज बुझगान इस सुखे नशे जो दौड़ाने वास्ते, इस सुखे नशे तो इन्हें आली जनरेशन जो बचाने वास्ते, नहीं तो इन्हें आले टाइम में जी अज जिया शराब ना पियाने है तो मतलब इंद जाए सो बुजुर्ग बुन जाए शरीक बुन जाए दरीक बुन जाए पड़ोसी बुन जाए जो मर्जी बो जी है शराब पीते हैं तो सो खुश बुझ गए हैं और भी एक नशा ही है वैसे लेकिन फिर भी यह पीते हैं लेकिन जहने ये आम बुझ गाने तो इतों बाद चिट्टा गया सो भी आम बुझ गाना फिर अगर यह इति पर रोक ना लगे।

0: শত এফএম ব্যান্ডে 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো এসে বি টিউন কর রো আর কার্যক্রম আর যে সচিন কাপুর সোগে বিলকুল লাইভ ফোন কর দেন জনাব আপনি আপনি রেডিও সেট মাতা কি হাল চাল না তুন্দে উম্মীদ কর নো তুন্দে হাল চাল ঠিকঠাক বুনে তো সব খরে বুনে আপনি ঘরে খুশ বুনে আর তন্দুরুস্ত বুনে মোটি গাল তা চলি জি ফিরি ফেসবুক রে মাধ্যম তো লাইভ লাগাতার ইচ্ছু কর দেন জনাব तो सब श्रोता अस हो जुड़ी सकते हैं जी जुड़ो करते हैं 7088 7099 पर कॉल करी करी नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर करना चाहता 7088 7099 पर तो सब श्रोता कॉल करी सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सुन सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी अस हो साझा कर सकते हैं। यह गल विशेष ध्यान रहे श्रोताओं की जानकारी की असो रेडियो मंझ दसन लायक जरूर बोआ। बहरहाल करनैल राणा जी रहे गीत तो कि चिट्टे ने रोल दिती जवानी लोग को है ना और वाकई में ही चिट्टा जो आसो हिमाचल प्रदेश में भी अपने पैर के आसो जगह जगह पिसारी चुकरा हाशो तो मुझे लगता कि हर गली हर मोहल्ले हर नुक्कड़ में क्या इस समय चिट्टा फैली चुक रहा और सरकार के सो बहुत बेहतरीन काम कर दिया इसी को रोकने वास्ते। न केवल सरकार जो ही है बल्कि हाँ बस जो करा सो सरकार ही करा इवन कि असु अपने आप भी किया एक कदम चुकना पैना असु अपने आप भी किया जिम्मेदार बनना पैना है और ये जिम्मेदारी किया सो असु लेना पैने श्रोताओं कि जनाब जिम्मेदारी लिया कि तुंदे आस पड़ोस में अगर खागर तुसु कोई हो इस प्रकार होगी चिट्टे भी चिट्टा लेंदा या फिर ड्रग अफीम कुछ भी ऐसा जो सुक्का नशा ऐसा करदा ता तसियो नज़दीकी पुलिस रे हवाले नज़दीकी थाने में किसी करी से भी कंप्लेंट किया सो ज़रूर करा वीडियो किया सो ज़रूर बना नहीं तो इन वाले जनरेशन के श्रोताओं सो बहुत ख़राब बुछ गाने हाँ बहुत ज़्यादा बर्बाद किया सो बुछ गाने हाँ। बहरहाल कार्यक्रम में इंदे श्रोता गाना सो की कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बल्लू दिन नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार।
1: हाँ जी कैसे हो जी ठीक है
0: आवाज नहीं छू करती जी तुंदी चलिए इंदे श्रोता सो की कनेक्टेड थी लेकिन आवाज़ नहीं छू करती अब फिर बंदे ने कनेक्ट अच्छे सिग्नल में इंदा तो सो की भी रूबरू जरूर कर ले तो गल करो कर देती है ना कि मतलब ये हमेशा से सरकार जो दोष ना दीन हमेशा से प्रशासन दोष ना दीन कुछ जिम्मेदारी किया सो यह भी आम नागरिक किया सो भी कुछ जिम्मेदारी किया सो समझ लिया सिर्फ इंदी तूने के भी जिम्मेदारी नहीं है कि घर हो गए खाना खाओ सोए गए या नौकरी में जाए नौकरी करे या काम करो अपना जाए सो कोई भी नौकरी हुआ सब जाए सो गवर्नमेंट इम्प्लॉयज़ ने जाए सो प्राइवेट इम्प्लॉयज़ ने जाए सो कोई भी कि नौकरी करे और नौकरी तो बाद कि सीधा घर हो चले गए इस प्रकार होगी अगर है सोसाइटी जो लेकर ही चलते हैं श्रोतों और इस प्रकार की चीज़ है भी करते हैं कोशिश करते हैं अपनी औरतों ता इस नशे जो किया सुखे नशे जो किया सो है रोक ही सकते हैं श्रोतों। बहरहाल सरकार दसो करते कि अपना प्रयास जरूर करो करते हैं इन अगले श्रोता सुखे कनेक्टेड हैं नमस्ते जी।
2: हेलो
0: नमस्ते जी नमस्ते जी कौन बोलूं देन और कड़ी थम बोलूं देन हेलो माफ़ करे जी यार भी आवाज़ की सोच तक आप पुजे ने और डिसकनेक्ट करना पे हुआ। बहरहाल हम दसो कर दो कि प्रदेश में नशे व खात्मा करने वास्ते किया नशे में जो युवा डूब रहे युवा पीढ़ी जो बचाने वास्ते किया सो सरकार लगातार किया श्रोतों सो काम करू कर दिया और हम तू दसना चाहता हाँ कि सरकार लगातार किया श्रोतों सो काम करू कर दिया और हम तू दसना चाहता हाँ कि पुलिस री औरतों नशा माफिया पर किया सो बढ़िया कार्रवाई अच्छी कार्रवाई किया मजबूत कार्रवाई किया मजबूत कार्रवाई भुचु कर दे हा श्रोतों और नशा माफी पर किया सो कार्रवाई वे सोगी स्वास्थ्य विभाग भी किया सो नशे में डूबते युवा जो किया सो बचाने वास्ते किया सो एक्शन प्लान में ज़रूर हा और इंदे फिलहाल श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं नमस्ते जी।
2: हेलो
0: नमस्ते जी नमस्ते
2: कैसे आप
0: बहुत बढ़िया जी तो है बल्ला तो है कदन क्या करूँ कर दिन और कौन बल्लू दिन
2: मैं बैठी हूँ, मैं साक्षी बोल रही हूँ यार से। हाँ
0: अच्छा साक्षी जी, गद्याली भाषा तुसु समझे हिंदी या पूरे जैसा बोली माओ बोलता?
2: जी
0: अच्छा कुंडने गीत हुन पसंद कर ले, पहले ते दसा।
2: बंगला मुखी मार करना या करना है वो सुनाओ। हाँ
0: बगला मुखी माता रहा ना जी।
2: जी नया गाना।
0: अच्छा
2: और
0: चलिए
2: ठीक है बाकी सारे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ने, बिल्कुल बढ़िया ना है।
2: बारिश हुई थी साइड।
0: काफी ज्यादा बरखा हुई थी जी, तुंदी किनारी भी बोई बोने होप सो।
2: हाँ जी
0: अच्छा तो आज का दिन कदे गो तुंदा साक्षी जी? हाँ
2: आई ठीक गया। आज का दिन ठीक
0: जी
2: गया है। हाँ
0: अच्छा ठीक है,
2: जी
0: चलिए ठीक है जी। साक्षी जी जरूर होने ले तुसु तुंदा गीत। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ दसू करता तो कुछ जानकारी है, करू करते थी शेयर तुसु की शतों की प्रदेश में नशे व खात्मा और नशे में डूबती युवा पीढ़ी जो बचाने वास्ते की ऐसो सरकार लगातार काम की ऐसो करू कर दिए। पुलिस री औरतों नशा माफी जो नशा माफी इंतजिया पर कार्रवाई भी चुकर दी। सो के सोगे स्वास्थ्य विभाग भी नशे में डूबे युवा जो कि ऐसो बचाने वास्ते एक्शन प्लान की ऐसो तैयार करू कर दा। हाँ स्वास्थ्य विभाग नशे में डूबे जो युवा इन सोगे अन्य मनु जो जो धीरे धीरे नशे में प्रयोग करते हैं तीनों भी नशे छुड़ाने वास्ते किया सो मुख्य धारा थो जुड़ू करते हैं, है ना। और इति वास्ते आशा वर्कर भी चुकी अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि ऐसा बड़ी जिम्मेदारी देती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार कार्य योजना के अनुसार प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य PHC और आयुष्मान आरोग्य केंद्र जो जुड़ी करे कि ऐसा मजबूत डी एडिक्शन नशा मुक्ति नेटवर्क स्थापित किया शुभ चु करता है। तो सरकार तो बहुत अच्छा प्रयास करू कर दे, बहुत बढ़िया प्रयास किया सो करू कर दे और लगातार करू कर दे। हाँ लेकिन ये प्रयास जिंगे मैं दसो कि केवल है सरकार जो ना थोपन, है ना, कि सरकार है ना करो, सरकार है वो ना करो, या है प्रशासन जो ना थोपन कि प्रशासन है ये ना करो, प्रशासन है फलाना ना करो, ढमकाना ना करो। कुछ यह आम जो जनता, आम जो नागरिक ने है ना, ये भी यह है कुछ जिम्मेदारी के ना सो समझ लेन और जिम्मेदारी थो कि सो चल देन आगू बढ़ देन और सुख के नशे जो किया इसी जो सिरा खात्मा किया सो कर दे हिन। ये कोशिश है सब किया सो जरूर कर दे हिन। शो तो बहरहाल तो सब बन रहे समय आर जे सचिन कपूर सो के गूंज अपने पन रे। और आइए कार्यक्रम में जब फरमाइश दौर किया सो भी

पूरा करना आसू है ना जी। तदी वास्ते वे है बिल्कुल तैयार हिन। चलिए चल देन और तैयार तो है बिल्कुल ना जनाब। तो सब बन रहे हैं इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन सोगी और हेरे देवी ये हाँ हेरे मंगल कमल नहरी ये रे गीत था जरूर हुनन देन जनाब। तो सभी जो इस गीता जो सर्च करो करते हैं थोड़ा करे कि ऐसो नेटवर्क इशू करता है। ता चलिए तिन तक इंजॉय कर देना है सब जिंदगी सो गीत लग रहा तिन तक इंजॉय कर देन कमल ले दी रहा ये गीत की टिक टिक टोकेदार आवाज़ सुनी आ रहा टोकेदार आवाज़ बड़ा आया हो। ता लेके चल देने इस गीतारी कनारी तू सब भी जो

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सब बी ट्यून कर रो रहे कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होनु कर दें जनाब अपने अपने रेडियो उस सेट में और वेड़ी गुंजन धर्मशाला में कॉल जरूर कर सकते हैं 7018887091 पर था। चलिए कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं छोतो और कार्यक्रम मंच अब लेकर चलते तू सब भी जो फरमाइश रहा तो और किया सो बिल्कुल पूरा करना हाँ सू और नुआला हुना तुम दे की श्रोता तो सो जरूर।

चले सो तो कार्यक्रम मंच की असो जानकारी रा पिटारा ही यहीं खुल दे रहना हा और गीत संगीत रा पिटारा की असो तो सो भी यहीं चल दे रहना आना जनाब जी चल रहा ठीक है ना। तो चलिए हक मुके फिर की असो थोड़ी करी आखो और जानकारी तुस हो गया है शेयर करना करना चाहते हैं इन तो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर है वीडियो गुंजन और तो ऐसा बस होगी बिल्कुल लाइव बन रहे जी वीडियो सेट में बहुत सारे श्रोता सो होगी कनेक्ट भी हुए हैं और है फेसबुक वे माध्यम तो भी किया सो लाइव इन दिन जनाब बार बार है ना अपना एक आधा कार्यक्रम है श्रोता इस कार्यक्रम सो की तो है जुड़ी सकते हैं जुड़ने वास्ते में नंबर किए सो तू सो की साझा करें इस गादे कार्यक्रम जो भी दसी तो है फुल कड़ी होनी सकते हैं वैसे अगर तो है धर्मशाला रहे लोकल हिन 91.2 FM मा के इन द चैनल है इस चैनल में तो है इस कार्यक्रम जो अपने गादे कार्यक्रम जो कि सो होनी सकते हैं चूर थो पंच है ना और बहुत जल्द बड़े खास गेस्ट के न सो तू सो गया है रूबरू करवल है जिनकी वीडियो मंच करवाते हैं अक्सर करवाते हैं तो फेसबुक के माध्यम तो भी तीन खास गेस्ट होगी रूबरू के सो जरूर करे ले तो जानकारी रा पिटारा खोल देना और जानकारी री किनारी के अनसो चल दें सो तो HRTC है कि ऐसो 297 इलेक्ट्रिक बस समय से 150 हिमाचल की ऐसो पुजाई देती जी है ना 150 की ऐसो हिमाचल पुजाई देती नहीं हिमाचल रहे परमाणु में ही बस सारा पुज भी गेन पुजने थो बाद के सो बस निगम प्रबंधन डीपू जो के असो अलॉट भी करी दीती इन सो तो ये बस विभिन्न डीपू में के असो पुजी भी गई न और अब विभिन्न रूटा पर किया ये चली भी पैनी हिन पहला चरण जो है निगम रा निगम प्रबंधन है कि ऐसो 9 डीपू जो ये इलेक्ट्रिकल बस की ऐसो भेजी देती है ना नई इलेक्ट्रिकल बस री जो असो तो सो बिल्कुल प्री डिलीवरी की ऐसो भी बुझगी है इंस्पेक्शन भी अब डिपू में की ऐसो निगम अधिकारी और टेक्निकल इंजीनियर के ऐसो हेरू करते हैं और बस रूटा पे अपने रूटापुर की ऐसो दौड़ना शुरू हो जाएगा था चलिए जी हिमाचल प्रदेश वास्ते के ऐसो बड़ी गर्व की गल है हर एक प्रत्येक व्यक्ति वास्ते बड़ी गर्व की गल है कि 150 न्यू इलेक्ट्रिकल बस है ना सो हिमाचल प्रदेश में पूजेगी हिन्न इति वास्ते है बिल्कुल इन द जो माननीय मुख्यमंत्री हिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी त्यारा तहे दिल तो है धन्यवाद कर दिन कि तिन्या की असो 150 बस हिमाचल प्रदेश में गया सो बुझाई देती हिन और हिमाचल भी आम जनता जो किया इस सुख सुविधा मूल कर दे हा और मूलने भी है ना और अह आम जनता हमेशा अपने प्रतिनिधित्वों किया जनप्रतिनिधित्वों किया हमेशा ये चाहते हैं कि त्यारे जो भी जनप्रतिनिधि हिन सो जरूर तीन आवास तक काम करन त्यारी गल्ला जो हो त्यारे दुख बीमारी में त्यारा साथ दिन और अपना वोट लेकर कि सो प्रतिनिधि भी यही चाहते हैं कि सो अपना वोट के सो पक्का करना है ना तो वोट पक्का तो ही पूछ सकता जनाब जाने तो है प्रतिनिधि बने गए ना तो सो पूरे तस एरिया रे बुंदे पूरे बेशक सो हिमाचल रे गल बो जाए धर्मशाला रे गल बो फिर सो कोई भी पार्टी वाज पार्टी की सोना चल दे है ना जाने अक मौके तो है बनेंगे न तो बनेंगे ना और यही एक गुडविल बंदी प्रतिनिधि रही कि सो फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता वास्ते किया सो दिन रात काम करता और मेहनत करता है बरहाल हूँ सचिन का पूरा वक्त उचगो श्रोता तू सब भी थो अलविदा लेने रहा समय रहा वाकई मैं पता ना चलता कि समय कहने ने किया सो उचगो हा आऊँ सचिन कपूर ले लैन तो सुथो इजाजत श्रोता हूँ गंदे गंदे बनना चाहनू हाँ हंसते रहे मुस्कुराते रहे माँ बाप री सेवा की असो जरूर करते रहे बुजुर्ग री सेवा की असो जरूर करते रहे पर्यावरण जो कि असो सुरक्षित जरूर रखा इन खास गलों का ध्यान किया असो अपनी लाइफ में जरूर रखा श्रोता हूँ पूछे सका तो जरूर कसी भी ने कसी भी किया सो रोजाना मदद जरूर करा आऊँ सचिन कपूर ले लैनो इजाजत तुस सब भी थो नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार, 91.2 मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। घुसपैठियों को बाहर निकालने का देश भर में चलेगा अभियान। नशा छुड़ाने के साथ मुख्य धारा से जोड़ेंगे स्वास्थ्य विभाग। 9 डिपुओं को अलॉट हुई नई 150 HRTC इलेक्ट्रिक बसें। हिमाचल में सोलो ट्रैवल प्रोटोकॉल होगा लागू, महिला पर्यटकों को मिलेंगी ठहराव सुविधाएं। पोस्ट मशीनों में विभाग ने डाला राशन कार्ड मोड का विकल्प। स्कूलों को डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर रहना होगा अपडेट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवस्था परिवर्तन के सकारात्मक परिणाम अब आर्थिक मोर्चे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। वित्तीय अनुशासन, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन तथा जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति के चलते कांग्रेस सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभों का तेजी से निपटारा कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण 4 प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% तथा डीजल बसों की खरीद पर 30% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश भर में चिन्हित 1000 मार्गों पर बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। धर्मशाला नगर निगम के नवनिर्वाचित 17 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज मिनी सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में गरिमापूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा ने धर्मशाला नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपायुक्त ने नवनिर्वाचित पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि नगर निगम धर्मशाला के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी पार्षद जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास कार्यों को गति देंगे। देश के माओवादियों से मुक्त करने के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अब घुसपैठियों से मुक्त बनाने के मिशन में जुट गए हैं। बिहार, राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा के सीमावर्ती जिलों का दौरा करने के बाद शाह ने अब सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलाई है। 9 जुलाई को दिल्ली में होने वाली बैठक में खुफिया ब्यूरो, ईडी, एनआईए समेत सभी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में पूरे प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के साथ साथ घुसपैठ से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रदेश में नशे के खात्मे और नशे में डूबती युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पुलिस की ओर से नशा माफिया पर की जा रही कार्रवाई के साथ स्वास्थ्य विभाग ने नशे में डूबते युवाओं को बचाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग नशे में डूबे युवाओं सहित अन्य लोगों को नशा छुड़ाने के साथ मुख्य धारा से जोड़ेंगे। इसके लिए आशा वर्करों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार कार्य योजना के अनुसार प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य और आयुष्मान आरोग्य केंद्रों को जोड़कर एक मजबूत डी एडिक्शन नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। HRTC की 297 इलेक्ट्रिक बसों में से 150 हिमाचल पहुंच गई हैं। हिमाचल के परवानू में ई बसों के पास पहुंचने के बाद ये बसें निगम प्रबंधन ने डिपुओं को अलॉट भी कर दी हैं। ये बसें विभिन्न डिपुओं में पहुंच गई और अब विभिन्न रूटों पर ये बसें चलेंगी। प्राथमिक चरण में निगम प्रबंधन ने 9 डिपुओं को ये इलेक्ट्रिक बसें भेजी हैं। नई इलेक्ट्रिक बसों की PDI यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन भी अब डिपुओं में निगम अधिकारी व टेक्निकल इंजीनियर्स करेंगे और इंस्पेक्शन पूरी होने के बाद ये बसें रूटों पर दौड़ेंगी, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में शी ट्रैवल पॉलिसी के तहत सोलो ट्रैवल प्रोटोकॉल लागू होगा। इसके तहत सोलो महिला ट्रैवलर के लिए सुरक्षित व सुविधाजनक माहौल बनेगा।
सी ट्रैवल पॉलिसी लागू करने के कवायद के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फाइनल कर ली गई है। पर्यटन विभाग ने SOP महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस पहल के तहत महिला पर्यटकों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था, प्रमाणिक महिला अनुकूल ठहराव सुविधाएं और 24 घंटे सहायता और आपातकालीन व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश के हजारों राशन कार्ड धारकों और डिपो संचालकों को राहत देते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पोस्ट मशीनों में राशन कार्ड मोड का विकल्प फिर से उपलब्ध करा दिया है। इससे पिछले करीब एक सप्ताह से QR कोड आधारित वितरित प्रणाली में आ रही तकनीकी दिक्कतों से निजात मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने मानसून को लेकर स्कूलों को तैयार रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही अब विभाग ने सभी स्कूलों को SDMA पोर्टल यानी डिजास्टर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर अपडेट रहने को भी कहा है। सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को स्कूल भवनों और अन्य आधारभूत ढांचे को होने वाले नुकसान की जानकारी तुरंत पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों में कहा है कि यदि भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन, तूफान या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से स्कूल भवन, कक्षाएं, रास्ते, चारदीवारी या अन्य ढांचे को नुकसान पहुंचता है तो उसकी सूचना बिना देरी के पोर्टल पर दर्ज की जाए। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश से राज्य में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय टास्क फोर्स की 10वीं बैठक में देनी होगी। हिमाचल 9 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये रिपोर्ट साझा करेगा। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव पर्यावरण सुशील कुमार सिंगला शामिल हो सकते हैं। टास्क फोर्स ने विशेष रूप से ये जानना चाहा है कि राज्य में व्यर्थ प्लास्टिक का निपटान किस प्रकार से किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट से के देश विदेश में बसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। अब किसी कारणवश दियोट सिद्ध नहीं पहुंच पाने वाले श्रद्धालु घर बैठे मंदिर का विशेष प्रसाद मंगवा सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट पहली बार इंडिया पोस्ट के सहयोग से ऑनलाइन प्रसाद वितरण सेवा शुरू करने जा रहा है। श्रद्धालु बाबा बालकनाथ मंदिर की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे और प्रसाद उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इस विशेष प्रसाद पैकेज में बाबा जी को अर्पित किया जाने वाला रोट, पवित्र जल, अखंड धूने की विभूति, चांदी की सिंगी, धूप तथा पवित्र सिंदूर शामिल रहेगा। अंतिम स्वीकृति के बाद प्रसाद की कीमत भी तय की जाएगी। स्पीति घाटी की 17 वर्षीय तंजिन नॉर्डन ने साहस, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम के दम पर 19,587 फीट ऊंची कनिमो चोटी को फतेह कर इतिहास रच दिया है। कम उम्र में हासिल की ये उपलब्धि न केवल तंजिन के परिवार बल्कि पूरे लाहौल स्पीति और हिमाचल के लिए गर्व का विषय है। परिवार ने तंजिन की उपलब्धि पर खुशी जताई है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

नमस्कार श्रोतो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी को मेरी ओर से गुड इवनिंग है जी, क्योंकि कार्यक्रम का नाम भी गुड इवनिंग है, तो आप सभी को भी गुड इवनिंग है। मैं आप सभी का अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर हाजिर हुआ कार्यक्रम लेकर। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो चलिए, धर्मशाला की शाम जो है वो अक्सर बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सुहानी होती है, प्यारी होती है और लाजवाब होती है। इस शाम को ढलते हुए देख हम सभी को जो है वो बहुत आनंद आता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि हम वाकई में हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में और इंडिया में पैदा हुए हैं। ये हम सबकी खुशनसीबी है शतम। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में, जैसे कि आप सभी बखूबी जानते हैं कि 6 से 8 ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें लाइव पिटारा जानकारियों का भी खुलता है और लाइव पिटारा गीत संगीत का भी खुलता है श्रोतों। तो आइए सबसे पहले मौसम की जानकारी, क्योंकि बेहद उत्सुक होते हैं बहुत सारे लोग मौसम की जानकारी से, जानकारी को लेकर धर्मशाला की खासकर। तो इस समय 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोतों, और नमी की बात करूं तो नमी इस समय जो है वो 90% के आसपास है। तो आइए जी, कार्यक्रम का आगाज़ जो है वो कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा जनाब? बिल्कुल इंतज़ार की घड़ियां आप ख़त्म कीजिए। कार्यक्रम में गीत संगीत का जो

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। बिल्कुल चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, वाकई में ये गीत जो पुराने गीत है ना श्रोतों, ये वाकई में ये बाकमाल है, बहुत कमाल है ये।

लाजवाब, मतलब लाजवाब है ये। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, चांद तारों में नजर आए शहर तेरा। आइए फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं आज के विचार की ओर। जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में जो है वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। श्रोताओं, जो अनुभव सिखा के जाता है वो कोई और नहीं सिखा के जाता, जो वक्त सिखाता है। कहते हैं ना कि वक्त सब कुछ सिखा देता है, बिल्कुल सही कहते हैं कि वक्त के साथ जो आपका अनुभव है ना वो बहुत कुछ सिखा देता है आपको, और बहुत सी बातें आपको सिखा देता है। जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड के आप अनुभव के साथ अगर आप चलते हैं, मतलब आप जितना भी अनुभव हो सकता है उतना गेन करते हैं, तो लाजवाब है, फिर तो बाकमाल है। और असली टीचर मुझे लगता है, असली सर्वश्रेष्ठ जो टीचर है वो वाकई में ही वक्त है श्रोतों, वो वाकई में ही वक्त है। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो सुन रहे हैं। लेके चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के इस गीत की ओर, और गीत के बाद श्रोताओं बिल्कुल आप सभी को लेके चलेंगे आप कुछ एक खास जानकारियों की ओर इस गीत के बाद।

श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है जनाब आप सभी का, सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो चलिए जी, जैसे कि आप सभी बखूबी जान रहे हैं इस बात को और जानते हैं इस बात को कि हम जो है फेसबुक के माध्यम से भी आपके साथ लाइव आजकल जुड़ रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है वो पूरी टीम, रेडियो गुंजन की पूरी टीम जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है ना, किस प्रकार से मैंने देखा है बहुत सारे हमारे जो जानने वाले हैं वो अक्सर पूछते हैं कि रेडियो में जो है वो किस प्रकार से काम होता है ना। तो आप सभी लाइव के माध्यम से इतना तो सुन पाते हैं और देख पाते हैं कि किस प्रकार से हल्की फुल्की सी बातचीत जो है वो आपके साथ होती रहती है लाइव के माध्यम से। बहरहाल आप सभी का मैं नाचीज़ सचिन कपूर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। वाकई में देखिए इंसान हमेशा जो है ना वो बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट सा चैप्टर रहता है अपनी लाइफ में इंसान का, है ना। और जो अगर सीधी सड़क हो तो हर कोई जो है वो चल लेता है, लेकिन लाइफ जो है हमारी वो लाइफ इस प्रकार की है क्योंकि सीधी सड़क नहीं है, लाइफ कुछ इस प्रकार से चल रही है। और जो इस प्रकार से व्यक्ति चलता है वो कभी भी खता नहीं खा सकता, वो कभी भी डगमगा नहीं सकता लाइफ में। तो बहरहाल कार्यक्रम में आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो हम आप तक साझा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम करते भी हैं श्रोताओं। चलिए, प्रदेश में नशे के खात्मे को और नशे में डूबते युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पुलिस की ओर से नशा माफियों पर की जा रही है कार्रवाई। शतों कार्रवाई के साथ स्वास्थ्य विभाग ने नशे में डूबते युवाओं को बचाने के लिए एक्शन प्लान जो है श्रोताओं वो तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग नशे में डूबे युवाओं सहित अन्य लोगों को नशा छुड़ाने के साथ मुख्य धारा से जोड़ेगा श्रोताओं, है ना। इसके लिए आशा वर्कर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार कार्य योजना के अनुसार प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य केंद्रों को जोड़कर एक मजबूत डी एडिक्शन नशा मुक्त, जिसको कहा जाता है डी एडिक्शन नशा मुक्त, जिसे हम सभी कहते हैं, नेटवर्क स्थापित जो है वो किया जाएगा श्रोताओं। इसी के साथ अन्य जानकारियां भी हैं जो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे श्रोताओं। आप सभी यूं ही बने रहिएगा आपके अपने वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने वन की और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। लेकिन चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। तो बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी का, सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, गुड होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लाजवाब होंगे। श्रोतो है ना, ये सब गुण अगर आप में आए तो आप मस्त हैं भाई। दुनिया में होता बहुत कम है ना श्रोताओं, इंसान जो है वो अपनी परिस्थितियों के साथ जो है वो कह सकते हैं कि उसको पकड़ा होता है परिस्थितियों ने, है ना। तो ऐसा बहुत कम होता है कि हम हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि मुझे लगता है ना वाकई में श्रोताओं, लाइफ इज़ मतलब हम कह सकते हैं लाइफ इज़ सो शॉर्ट, मतलब बड़ी छोटी ज़िंदगी है। पल भर में क्या हो जाए हमें नहीं पता, अगले ही पल क्या हो जाए हमें नहीं पता। सो मुझे ये लगता है कि जितना आप घुल मिल कर रहेंगे, जितना आप आपसी प्रेम के साथ रहेंगे, जितना आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, उतना ही रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होता है और उतनी ही लाइफ जो है वो बेटर हो जाती है श्रोतो, है ना। तो चलिए कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। कार्यक्रम का नाम है धर्मशाला की शाम बहुत खूबसूरत है, धर्मशाला की वादियां बहुत खूबसूरत है, धर्मशाला की हवाएं बहुत खूबसूरत है। तो चलिए जी, आप सभी का एक बार पुनः मैं सचिन कपूर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन लेके चलते हैं आप सभी को जानकारी के पिटारे की ओर। आप सभी को बताना चाहता हूँ श्रोताओं, HRTC की 297 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं उसमें से 150 हिमाचल पहुंच गई हैं। हिमाचल के परमाणु में जो है वो ई बसों के पास पहुंचने के बाद जो है ई बसें जो हैं वो पहुंच गई हैं और पहुंचने के बाद जो है ये बसें निगम प्रबंधन ने डिपो को अलॉट भी कर दी हैं। श्रोताओं ये बसें विभिन्न डिपुओं में जो है वो पहुंच गई हैं और अब विभिन्न रूटों पर ये बसें चलेंगी प्राथमिक चरण में।

जो पहला चरण है प्राथमिक चरण में निगम प्रबंधन ने 9 डिपो को ये इलेक्ट्रिकल बसें जो हैं श्रोताओं में बताना चाहता हूँ वो भेजी हैं। नई इलेक्ट्रिकल बसों की PDI यानी फ्री डिलीवरी भी जो है वो डिपो में होगी है। फ्री डिलीवरी जो है वो भी डिपो में स्वतः होगी है। निगम अधिकारी व टेक्निकल इंजीनियर जो है वो जांच पड़ताल जो है वो कर रहे हैं। इंस्पेक्शन पूरी होने के बाद ये बसें रूटों पर अब दौड़ेंगी, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी और ये सुविधा लोगों के लिए बहुत अच्छी है। 9 डिपो में जो है वो चली गई हैं बसें, है ना, और इंस्पेक्शन जो है वो जारी है। इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं, निगम अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं। और इसके लिए 150 बसें हिमाचल प्रदेश को देने के लिए हम हमारे अपने हिमाचल प्रदेश के जो CM साहब हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। श्री सुखविंदर सिंह सुखू जी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार कि उन्होंने हिमाचल के लोगों को इतनी बेहतरीन सुविधा जो है वो मुहैया करवाई है। तो आइए, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। पिटारा जो है वो आप सभी यूँ ही सुनते भी रहेंगे, देखते भी रहेंगे RJ सचिन कपूर के साथ। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शो तो एफएम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरसी वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो आइए जी कार्यक्रम में देखिए, जानकारियों का पिटारा जो है वो चलता रहेगा, खुलता रहेगा और यूं ही बनता रहेगा, सवरता रहेगा ना। लेके चलते हैं श्रोतों अगली जानकारी की ओर। स्कूल शिक्षा विभाग ने मानसून को लेकर स्कूल को तैयार रहने को जो है वो कहा है। जी जनाब जी बिल्कुल, इसके साथ ही अब विभाग ने जो है वो सभी स्कूलों को SDME पोर्टल यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपडेट रहने को भी जो है वो कह दिया है। श्रोतों सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थान के प्रमुख जो भी जितने भी प्रमुख हैं, प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, स्कूल भवनों को और अन्य आधारभूत ढांचों को होने वाले नुकसान की जानकारी तुरंत पोर्टल पर जो है वो अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा है कि यदि बारिश, बाढ़, भूस्खलन, तूफान या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से स्कूल भवन, कक्षाएं, वास्ते, चार दीवारी या अन्य ढांचे को नुकसान पहुँचता है तो उसकी सूचना बिना किसी देरी के पोर्टल पर दर्ज की जाए। श्रोताओं बिल्कुल, और निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके स्कूल में कभी मानसून को लेकर कुछ भी नुकसान जो है वो हुआ है, चाहे वो बाढ़ का नुकसान हो, भूस्खलन से हो, चाहे तूफान से हो, चाहे बारिश से हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा आपको लगती है कि स्कूल भवन में आ गई है और उसकी जानकारी जो है वो आपको पोर्टल पर, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड करनी होगी जनाब। ये आप जितने भी शिक्षा विभाग के लोग हैं वो इस जानकारी को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर साझा करें अपने हेडमास्टर के साथ, अपने टीचरों के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ। आप सभी सुन रहे हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ, और बिल्कुल लाइव कार्यक्रम ये चला हुआ है। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ही वही। तो चलिए इसी के साथ श्रोताओं लेके चलते हैं अब आप सभी को एक और प्यारे से गीत की ओर।

चलिए शो तो बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने होप सो सुना होगा। जी बिल्कुल सुना होगा है ना, और सुनते भी रहिए क्योंकि ये है आपका अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला और हम हैं आपके अपने आरचे सचिन कपूर। तो स्वागत है एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। तो चलिए जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में जो है वो आप सभी को लेके चलते हैं थोड़ी सी और आगे। आप सभी सुन रहे हैं इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ, और कार्यक्रम चल रहा है इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला। देखिए इस समय मैं एट प्रेजेंट जो बात बताना चाहता हूँ आपको सभी को कि देखिए 7 बजने वाले हैं, 7 बजने को केवल मात्र 12 मिनट जो है वो बाकी हैं और इस समय धर्मशाला में बरसात हो रही है, ठीक ठाक बरसात हो रही है। यानी कि ये ठंड की आहट जो है जो हमें मिल रही है प्रकृति की ओर से, वाकई में ही बाकमाल है, ये वाकई में ही कमाल है। कोई जवाब नहीं है, लफ्ज़ नहीं है धर्मशाला की इस बारिश के लिए, धर्मशाला के इस मौसम के लिए लफ्ज़ जो हैं वो कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ़ के लिए। क्योंकि देखिए जहाँ इतने गर्मी से जो है वो इतने सारे लोग अदर स्टेट में, इतने सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, सभी यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने जो है वो आ रहे हैं। लेकिन अब ये छुट्टियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, कल या परसों को सभी रवाना होंगे, एक से जो है वो स्कूल लगने वाले हैं, है ना जी। तो इस भीषण गर्मी में जो है वो यहाँ पर जितने भी लोग आए थे, जितने भी पर्यटक आए थे, उन्होंने काफ़ी आनंद नेचर का लिया है, काफ़ी आनंद जो है वो धर्मशाला की वादियों का लिया हुआ है श्रोताओं। तो चलिए इसी बीच में एक और जानकारी आप तक साझा करते हैं। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। जी बिल्कुल आप सभी के लिए राहत की खबर है अगर आप अन्य स्टेट से हमें देख रहे हैं तो। प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री जो है वो 2 दिन दूर है, बस 2 दिन में जो है वो एंट्री होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 30 जून से मानसून की आहट महसूस होने लगेगी। 30 जून यानी कि कल से जो है वो मानसून की आहट थोड़ी सी महसूस होने लगेगी। मुझे लगता है धर्मशाला में तो हो चुकी है ये मानसून की आहट महसूस आना, लेकिन अन्य स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ इस समय। 1 जुलाई को मानसून जो है वो हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। 1 से 4 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान 10 जिलों में कहीं कहीं पर जो है वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलने की भी चेतावनी जारी की है। श्रोताओं मौसम विज्ञान शिमला केंद्र के मौसम विशेषज्ञ संदीप शर्मा ने कहा कि मानसून अरब सागर से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उसके बाद हिमाचल के ऊना में प्रवेश करेगा। श्रोताओं तो ये कुछ खास जानकारी हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से भी और हमारे रेडियो के माध्यम से भी, जितने भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल आप सभी बने रहिएगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम, आपका अपना कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आज सचिन कपूर के साथ।

0: क्या बात है, क्या बात है, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, ये वाकई में ही क्या करें ना यार। जब प्यार हो गया तो फिर क्या कह सकते हैं, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार के आगे तो भाई साहब बड़े बड़े हार जाते हैं। तो हम और आप क्या चीज़ है फिर, है ना जी। तो चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम में कुछ एक और जानकारियां जो है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। श्रोताओं, आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी सुन रहे हैं सचिन कपूर को, इस आवाज़ को, और फेसबुक के माध्यम से भी सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं इस आवाज़ को, इस नाची इस आवाज़ को। आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और अगली जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं धर्मशाला नगर निगम के नवनिर्वाचित 17 पार्षद का शपथ ग्रहण समारोह आज मिनी सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में गरिमापूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। श्रोतम, कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा ने धर्मशाला नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्रोतम, उपायुक्त ने नव निर्वाचित पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि नगर निगम धर्मशाला के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी पार्षद जनता की अपेक्षाओं पर जो है वो खरा उतरते हुए विकास कार्य को गति देंगे, और ये सभी जनता जिन्होंने ये 17 के 17 पार्षद जो जताए हैं, तो 17 के 17 पार्षद ये ज़रूर बेहतरीन काम करेंगे, इस बात की हम भी उम्मीद जो है वो लगा कर बैठे हुए हैं। और इन 17 वार्ड की जितनी भी जनता है, जितने भी युवा हैं, जितनी भी जनता है, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग वर्ग है, ये सभी इस उम्मीद से है कि हमारे पार्षद जो है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन कार्य जो है वो ज़रूर करेंगे। चाहे फिर वो पंचायत इलेक्शन की बात हो, तो वहाँ पर भी जो पंचायत के लोग हैं वो इस बात की उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारे प्रधान उप प्रधान वार्ड पंच जो है वो अपने अपने पंचायत के लिए जो है वो बेहतरीन कार्य करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। तो इस बात की उम्मीद जो है वो बिल्कुल है। अब देखते हैं, देखिए जनता ने तो अपना काम कर दिया है, अपना बहुमूल्य वोट डालकर जो है वो अपने चहिताओं को भेज दिया है एमसी, है ना, नगर निगम में। अब बारी उनकी है कि वो किस प्रकार से अपनी जनता के साथ तालमेल रखते हैं, अपनी जनता के साथ आशीर्वाद रखते हैं, अपना प्यार रखते हैं, सहयोग रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इसको देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल हम सभी बखूबी तैयार हैं, हम सभी बेहद तैयार हैं। बहरहाल जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए जी, लेके चलेंगे अब आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। माफ करें, गीत का समय नहीं, अब समय हो चुका है श्रोताओं वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाटन, लेफ्टिनेंट जनरल विकास कोहिला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह बंदा, लेफ्टिनेंट जनरल महेंद्र पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण सहज कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और अवसर पर कहा कि समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सुलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
1: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
2: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
3: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
2: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
0: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
4: तय अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
3: बहू ठीक किया है तूने।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा देश जीतेगा।
1: टीवी हारेगा देश जीतेगा।
2: हेलो गेस्ट पहुंच रहे हैं, अकेले कैसे संभालूंगी मैं, थोड़ी तेज गाड़ी चला लो, जल्दी आओ।
3: क्या चाहती हैं कि वो गाड़ी बढ़ा दे, ठोक दे? क्या बताया था मैंने आपको?
2: सॉरी सर।
3: सॉरी नहीं, फोन उठाइए।
2: सुनो जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ।
3: जल्दी मत मचाओ, आराम से, सड़क दुर्घटना में जान मत गवाओ, जीवन है अनमोल सबको बताओ।
4: सड़क दुर्घटना की गल होई तां वाकई मैं इस पर थोड़ी करी टिप्पणियां जरूर करना चाहता कि आए दिन क्या सो सड़क दुर्घटना होंदी इन शोतों, कभी ओवर स्पीड जो लेकर कभी मतलब है ट्रिपलिंग कर दें, कभी सीट बेल्ट ना लेंदे ता एक्सीडेंट रे कारण के सो बड़े गंदे हिन है ना, ओवर स्पीड के सो मुख्य कारण है एक्सीडेंट रहा और सड़क दुर्घटना के सो बड़ू कर दी इन शो तो असू सभी जो किया तो सतर्क रहना है, सावधान रहना, हम सभी को जो है वो सावधान रहना है, सतर्क जो है वो रहना है शो तो इसके लिए हम सभी को यही करना होगा कि प्रयास करने होंगे। प्रयास इसी तरह से हो सकते हैं कि हम सही तरीके से जो है वो सड़क जो नियम है उनका पालन करें, सड़क नियमों को जो है वो तोड़े ना, है ना। इसके लिए सीट बेल्ट का उपयोग जो है वो ज़रूर करें। इसके लिए अगर आप दो पहिया वाहन में सवार हैं तो हेलमेट का प्रयोग जो है वो ज़रूर करें, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर करें। अगर हाँ ये सारी चीज़ें कर दें श्रोताओं तो हाँ कहना से थोड़ा करी सुरक्षित महसूस करी सकते हैं, है ना। और आप सभी सुरक्षित तभी हो पाएंगे जब आप सड़क नियमों का पालन करेंगे श्रोताओं, और हम चाहते हैं कि आप हम सभी जो है वो सड़क नियमों का पालन करें, क्योंकि देखिए हम सभी अपने अपने घर के स्टार हैं, है ना। अब बेशक हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने परिवार के स्टार हैं, और स्टार टूटता हुआ जो है वो परिवार नहीं देख सकता है। सो अपने लिए ना सही अपने परिवार के लिए जो है वो हेलमेट पहन लिया करो, सीट बेल्ट लगा लिया करो, ओवरटेकिंग गलत जगह ना किया करो, ओवर स्पीड ना किया करो, इन सभी बिंदुओं का खास ख्याल जो है वो ज़रूर रखा करो। बहरहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत।

श्रोताओं, तुमको हमसे प्यार है और हमको आप सभी श्रोताओं से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। जितने भी श्रोता इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से मुझे बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। बुज़ुर्गों से भी और सभी अन्य वर्गों से भी दिल लगा के कहो, कसम खा के कहो ना जनाब। बहुत प्यारा सा गीत था, दिल है तुम्हारा मूवी से लिया गया ये गीत है। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना। तो श्रोताओं, आज है राष्ट्रीय कैमरा दिवस। जी बिल्कुल, नेशनल कैमरा डे है। हर साल 29 जून को मनाया जाता है। ये दिन मानव इतिहास के सबसे बेहतरीन आविष्कारों में से एक कैमरा और हमारी यादों को संजोने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करने के लिए इस दिन का बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय कैमरा दिवस का महत्व, श्रोताओं, यादों का उत्सव। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैमरा सिर्फ एक गैजेट नहीं है, है ना, बल्कि खास पलों, खास भावनाओं को और इतिहास को हमेशा जिंदा रखने का जरिया है। तकनीक का सम्मान, श्रोताओं, ये दिन भारी भरकम पुराने कैमरों जैसे कैमरा से लेकर आज के आधुनिक स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों तक के शानदार सफ़र का जश्न जो है वो मनाता है। श्रोताओं, दुनिया भर के फोटोग्राफी प्रेमी और आम लोग इस दिन अपनी पसंदीदा तस्वीर साझा करते हुए इस कला की सराहना करते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं, गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो चलिए कैमरे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज है नेशनल कैमरा डे। जी बिल्कुल, नेशनल कैमरा डे है आज श्रोतो। तो इसकी जो अवधारणा है वो हज़ारों साल पुरानी है श्रोतो, जहाँ एक छोटे छेद से आने वाली रोशनी सामने की दीवार पर उल्टी छवि बनाती थी। 1660 के दशक में रॉबर्ट हुक ने पहला जो है वो श्रोतो पोर्टेबल कैमरा जो है वो विकसित किया था। श्रोतो आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं कि इसी प्रकार से कार्यक्रम चलता रहेगा और देखिए वाकई में ही ना कि जो कैमरा है वो आप खुद सोचिए कि हमारी कितनी अब तो चलो कैमरे का बहुत काम हो गया है, कैमरे से ही कमाल हो रहा है, कैमरे से ही लोग जो है वो पैसा भी कमा रहे हैं, फेमस भी हो रहे हैं, चाहे फिर वो आप इंस्टाग्राम की बात कर लो, फेसबुक की बात करो, ट्विटर की बात करो, टेलीग्राम की बात करो, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, अन्य ऐपें हैं जिसके ज़रिए आप फेमस भी हो रहे हैं, आपका चेहरा जो है वो हज़ारों लाखों मिलियंस लोगों तक जो है वो पहुँच रहा है ना। तो अब तो कैमरे का कमाल ही कमाल है, धमाल ही धमाल है श्रोताओं। लेकिन इस कैमरे का कमाल धमाल उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत अहम है जो अपनी यादों को संजो कर रखते हैं और अपनी यादों को संजोने का काम जो है वो करते हैं इस कैमरे के माध्यम से। तो आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

शो तो तेरे नाम बहुत ही प्यारा सा ये गीत आपने सुना, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, तेरे नाम मूवी से लिया गया था शो तो। और आइए अब वेड़ीगुंजन धर्मशाला में वक्त हुआ है एक छोटे से अंतराल का, और अंतराल के बाद शो तो अगली जानकारी के साथ आपको हम ज़रूर रूबरू करवाएंगे। लेके चलते हैं आप सभी को।

0: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
1: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
2: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
3: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
2: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
0: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
4: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
3: बहू, ठीक किया है तूने,

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हेलो, गेस्ट पहुंच रहे हैं। अकेले कैसे संभालूंगी मैं? थोड़ी तेज गाड़ी चला लो, जल्दी आओ।
3: क्या चाहते हैं कि वो गाड़ी बढ़ा दे, ठोक दे? क्या बताया था मैंने आपको?
2: सॉरी सर।
3: सॉरी नहीं, फोन उठाइए।
2: सुनो, जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ।
3: जल्दी मत मचाओ, आराम से। सड़क दुर्घटना में जान मत गवाओ, जीवन है अनमोल, सबको बताओ।
4: सुबह सुबह माँ बेटी चल दी है स्कूल।
5: नमस्ते भाभी जी।
6: नमस्ते।
4: अरे, इसे भी लड्डू खाना पसंद है।
5: बहुत।
4: बिल्कुल अपनी माँ पे गई है।
7: मैं अपनी माँ जैसे नहीं बनूंगी।
8: अजीब लगा ना सुनकर, पर मुझे माँ जैसा नहीं बनना। माँ जब मेरी उम्र की थी तब से उनके हाथ में बेलन है और मेरे हाथ में कलम है। माँ छोटी सी थी तब सबसे छुपाकर उनकी शादी करा दी, पर आज वो मुझे गर्व से स्कूल लेकर जाती है।
5: वो मैंने ही सिखाया, माँ जैसी बिल्कुल मत बनना। जब मैं इसकी उम्र की थी मैं अपनी गुड़िया के कपड़े बुनती थी,
8: और मेरी गुड़िया अपने सपने बुनती है।
9: ए गुड़िया, मन लगाकर पढ़ाई करना
5: चले।

0: मेरे मित्र, जीवन में कुछ पल बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता। और यदि आप किसी बात को मन में पकड़ कर रख लोगे तो जीवन में सब तबाह होने लगेगा, क्योंकि एक वक्त आता है जब लगता है कि क्या ही शिकायत की जाए किसी से। सब अपनी जगह सही तो होते हैं, लेकिन लोग अच्छे केवल अच्छे वक्त में ही होते हैं।
1: भाभी, देखो आपके कचरे में क्या है। अप्पू, कचरे के डिब्बे में क्या कर रहा है? उठ उठ। अप्पू, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। अप्पू के पापा, अरे जल्दी आओ, देखो क्या कर रहा है।
2: क्या हुआ?
1: देखो
3: अप्पू, क्या कर रहा है बेटा? अंदर गंदा है, आजा बाहर,
1: आजा आजा।
2: गुप्ता जी, बेटा स्ट्राइक पे बैठा है क्या?

0: इन्हें कितनी बार बताया नानी, मेरी बात सुनते ही नहीं, कि अगर गीला कचरा और सूखा कचरा एक साथ फेंकेंगे तो मेरा फ्यूचर भी तो कचरे में जाएगा।
1: सारा दिन फोन चला के पढ़ाई नहीं कर सकती?
2: पढ़ाई करके क्या करूंगी?
1: नौकरी मिलेगी।
2: नौकरी का क्या करूंगी?
1: पैसा आएगा।
2: पैसे का क्या करूंगी?
1: घर में नौकर जाकर काम करेंगे।
2: जब नौकर जाकर काम करेंगे तो मैं क्या करूंगी?
1: तू आराम से बैठ के फोन चलाइयो।
2: फोन ही नहीं चला रही हूँ।

0: शत अंतराल के बाद आप सभी का वीडियो गुंजन धर्मशाला में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और श्रोतों, चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन कार्यक्रम। आप सुन रहे थे 6 बजे गुड इवनिंग धर्मशाला में, यानी सचिन कपूर के साथ, यानी सनाचीज के साथ आप बने हुए हैं 6 बजे से, और 8 बजे तक ये कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल लाइव चलेगा। इस कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियों के साथ आप रूबरू हुए, बहुत से प्यारे प्यारे गीत संगीत के साथ आपको रूबरू करवाने की हमने कोशिश की श्रोतों। और अब वक्त हो गया है 7:45 और अब वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुन। पहले आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए विशिष्ट सेवा पुरस्कार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों पर 30% सब्सिडी देगी राज्य सरकार। मंडी व पालमपुर नगर निगम में आज हुआ महापौर और उप महापौर का चुनाव। सोलन व धर्मशाला में कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव स्थगित। भाजपा ने राज्य सरकार पर महापौर व उप महापौर के चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। और खराब मौसम व यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किन्नौर जिला प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानी, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का 4वां चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आज शिमला में बताया, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और

0: नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। धर्मशाला और सोलन में कोरम पूरा न होने के कारण आज महापौर और उपमहापौर का चुनाव नहीं हो पाया। मंडी में कोरम पूरा होने पर भाजपा पार्षद सुमन ठाकुर को महापौर और जितेंद्र शर्मा को उपमहापौर चुना गया। पालमपुर में भी कोरम पूरा होने पर महापौर व उपमहापौर का आज चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस पार्षद राणा सूद महापौर और नीलम मलिक उपमहापौर चुनेंगे। धर्मशाला में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी नवनिर्वाचित 17 पार्षदों को शपथ दिलाई, लेकिन कोरम पूरा न होने पर महापौर व उपमहापौर का चुनाव स्थगित किया गया। अब ये चुनाव 1 जुलाई को होगा।
1: कोरम के रिकॉर्ड में 3 करोड़ का ऊपर के इलेक्शन तो अभी फर्स्ट निशान में कोरम पूरा नहीं हुआ। कोरम पूरा न होने की वजह से अब आगे इसको नियमानुसार स्थगित किया गया है। हम दोबारा से एक समय तय करेंगे और इस तय समय पर दोबारा से सिंपल मेजोरिटी के साथ चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
0: दूसरी ओर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव टालने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी 11 पार्षद सदन में मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने जानबूझकर बैठक में भाग नहीं लिया।
2: भारतीय जनता पार्टी के सभी 11 पार्षद अंदर मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं वो नहीं आए, तो उस कारण जो है अब चुनाव जो है वो जिस तरह से एक्ट कहता है कि 1 तारीख को 3 बजे का समय इसका तय हुआ है, दूसरे में जो नंबर होगा मेजोरिटी उसमें ही चुनाव हो जाएगा।
0: उधर सोलन में भी उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने नवनिर्वाचित पार्षदों को आज शपथ दिलाई, लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण महापौर व उपमहापौर का चुनाव नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि अब महापौर व उपमहापौर का चुनाव 2 जुलाई को होगा।
3: सभी 17 पार्षदों ने आज शपथ ले ली है। उसके बाद हमने आधे घंटे का समय मेयर और डिप्टी मेयर के निर्वाचन के लिए दिया था। उसके बाद कुछ पार्षद बैठक में दोबारा हाजिर नहीं हुए और कोरम पूरा न होने की वजह से बैठक को स्थगित कर दिया गया है। और अब जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो 2 तारीख को 3 बजे सदस्यों को कोरम का जो प्रावधान है अगली बैठक में ये अब लागू नहीं होगा।
0: इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर षड्यंत्र के तहत महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि राज्य सरकार भाजपा पार्षदों को अतिक्रमण के झूठे मामलों में फंसाने का कार्य कर रही है।
4: जनता ने मत दिया, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सोलन कॉरपोरेशन में, मंडी कॉरपोरेशन में और धर्मशाला कॉरपोरेशन में जीत करके आई। केवल हथकंडे अपनाने के लिए 1 महीने तक कोर्ट नहीं करा। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर कुठाराघात करने के लिए और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हाईजैक करने के लिए षड्यंत्र किया। कोई पूछने वाला नहीं है कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सटेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके देश की स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से अधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने विकास की राजनीति पर मोहर लगाई है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में भारी मतदान किया है। उन्होंने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की रावीम पंचायत में स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आभार समारोह में शिरकत की। रोहित ठाकुर ने खंड विकास समिति जुब्बल की नव निर्वाचित अध्यक्ष कमलेश झकटा और अन्य सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि खंड विकास समिति जुब्बल की सभी 15 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि जिला परिषद की 3 सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए इस वर्ष 212 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ हो रही है और कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों का तेजी से निपटारा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों

0: के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों में अनियमितता बरतने और पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मिली धनराशि का लाभ अपने चहेतों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 2.25 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होने के बाद निरस्त कर दिया। ये टेंडर गाहरा लोहारड़ा सड़क के निर्माण के लिए जारी किया गया था। राजेंद्र राणा ने बताया कि वर्ष 2020-21 में उनके कार्यकाल की विधायक प्राथमिकता से नाबार्ड में स्वीकृत कुआड़ दरली सड़क की लोकेशन बदल दी गई है, जिससे मूल लाभार्थी प्रभावित हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि सुजानपुर सर्किट हाउस में रेलिंग निर्माण को लेकर भी अनियमितता बरती गई है और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद टेंडर जारी किया गया, जो नियमों के विपरीत है। राजेंद्र राणा ने इन मामलों की विजिलेंस जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। किन्नौर जिला प्रशासन ने खराब मौसम और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया है। ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन प्रशासन ने कहा कि मौसम व मार्ग की स्थिति में सुधार के बाद ही किन्नर कैलाश यात्रा करवाने का निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर देव समाज ने प्रशासन से धार्मिक व पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का हवाला देकर इस यात्रा पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। सतलुज नदी में बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए किन्नौर जिला में कड़छम बांध प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर आज रात 8 बजे से नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे में जिला प्रशासन और बांध प्रबंधन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतलुज के किनारे न जाने और सतर्कता बरतने की अपील की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है और पिछले 12 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने आज शिमला के जाखू मंदिर में दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। लाहौल स्पीति जिला के जहालमा नाले में आज अचानक बाढ़ आने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। जिला में तेज धूप के कारण ग्लेशियर पिघल से ये बाढ़ आई है। पानी के तेज बहाव से सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया वैकल्पिक मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और मनाली उदयपुर व पांगी किलाड़ सड़कें भी बंद हो गई हैं। क्षेत्र के लोगों ने सरकार व प्रशासन से सड़क संपर्क बहाल करने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए विशिष्ट सेवा पुरस्कार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों पर 30% सब्सिडी देगी राज्य सरकार। मंडी और पालमपुर नगर निगम में आज हुआ महापौर व उपमहापौर का चुनाव। सोलन और धर्मशाला में कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव स्थगित। भाजपा ने राज्य सरकार पर महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। और खराब मौसम व यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किन्नौर जिला प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा की को फिलहाल स्थगित रखने का लिया निर्णय। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर अब आपसे ले लेता हूँ अलविदा। श्रोताओं जाते जाते यही कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए और अपनों के साथ प्यार बढ़ाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूँ इजाज़त। नमस्ते धर्मशाला।
2: तुमसा कोई दूसरा इस समीपे हुआ तो रब से शिकायत हो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर।
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सब्जियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: मेरा
10: क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
12: सॉरी यार,
13: काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।
3: हाँ?

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया,
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हो फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो,
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों समझियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया।
3: खैर
0: कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई गहने गाड़ी 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो ये भी अच्छा है।
4: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र
5: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
7: मेरा
11: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
12: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
13: मोहित मेरा इस्तीफा।
14: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार? सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग।
12: एचआईवी एड्स अपने पन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

92.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।